0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

देखिए ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो कहना आसान होती है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और उन सभी में से एक है, वो है एक्सपेक्टेशंस रखना। काफी आसान है ना कहना कि यार डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सच बताओ हम इंसान है ना, रोबोट्स तो नहीं। एक्सपेक्टेशंस तो ऑटोमेटिकली लोगों के साथ आ ही जाती है। जब हम किसी के लिए वक्त निकालते हैं तो उम्मीद होती है कि वो भी निकालेगा। जब हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो लगता है कि यार वो भी दे देगा। और जब ये सब नहीं होता है ना तो दिल दुखता है। सल्यूशन क्या है? शायद एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना नहीं, उनकी जगह अप्रिसिएशन को लाना शायद एक सल्यूशन हो सकता है। मतलब अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया उसे बोनस समझिए, एंटाइटलमेंट नहीं। और दूसरी बात, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में बिल्कुल भी ना दीजिए। जितनी ज्यादा हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरों के एक्शंस पर होती है ना, हाँ उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमारे जिंदगी में आती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम पीपल, कम्युनिकेट मोर विद पीपल। मिर्ची पर आफरीन का साथ जुड़ गया है राइट हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बने रहेगा हमारे साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vietvala burka. Milci, burka.
1: हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं ऑफिस के टो।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट

0: घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
2: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
3: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: भाई दिन के इस वक्त पर आंखों में देखने के लिए तो ना ही कहो भाई। मतलब बैरली अभी आंखें हमारी खुलती है, दिन की शुरुआत होती है एंड थैंक्स टू द सूरज चाचू, घर से निकलते ही आंखें फिर से बंद भी हो जाती है, इतनी शदीद धूप है इस वक्त पर, अनबिलीवेबल यार।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: हाँ जी, वेदर ये कह रहा है 43 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम रहेगा और 31 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम रहेगा। देखिए अभी जो महसूस कर रहे हो आप वो 34 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी अभी तक अपने फुल फॉर्म में आई नहीं है, 34% पर चल रही है, ये आपने भी बिल्कुल नोटिस किया रहेगा कि हाँ जी गर्मी तो हो रही है लेकिन वो जो पसीने आते हैं हमारे जुलाई अगस्त वाले वो अभी तक नहीं आए हैं। तो भाई ठीक है, हर छोटी चीज को एक ब्लेसिंग मानकर चलते रहना चाहिए और इसी तरह से दिन आपको ना काफी अच्छा ही लगेगा। एंड आई एम श्योर यार आपका दिन अब तो शुरू हुआ है, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। सो यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज सिंपली आफ्टरनून माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोलडाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफ्टरनून का साथ है आपके साथ। और क्यों आज कम नींद नहीं भाई, आजकल कम नींद नहीं, नींद बहुत ज्यादा है। क्या मुझे प्यार है मेरी नींद से? बहुत ज्यादा है। और अगर आप भी मेरी तरह हो तो फिर यार शाउट आउट दीजिए मुझे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका आफ्टरनून के साथ। और आज की खबर उन लोगों के लिए है जो टैक्सी से हर रोज कैब से ट्रैवल करते हैं। देखिए, कैब बुक करते वक्त आप सिर्फ फेयर्स कंपेयर करते हैं या फिर सेफ्टी भी देखते हैं? देखिए, अगर आप कतर में राइड हेलिंग एप्स जो होते हैं जैसे वो यूज करते हैं तो उनके लिए क्विक अपडेट है, वो सुन लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ऑफिशियली उन एप्स की लिस्ट रिलीज की है जो कतर में लीगली ऑपरेट कर सकती है। हाँ जी, तो इस लिस्ट में उबेर, करवा, राइड, बदरगो, अबेर, उसके अलावा ईज गो एंड वेयर टू गो, ये सारे एप्स ये शामिल है। अब आप बोलोगे कि आफरीन, ये तो हम जानते हैं भाई, मतलब इसी में तो हम ट्रैवल करते हैं। लेकिन नॉट ऑलवेज, न्यूज़ ये है कि अथॉरिटीज ने बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी है कि अनलाइसेंस्ड ऑपरेटर्स और व्हीकल्स के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। हम अक्सर राइड बुक करते हुए ये देखते हैं ना कि यार कितना सस्ता चल रहा है हमारा राइड, है ना। लेकिन स्मार्ट क्वेश्चन ये भी होना चाहिए, भाई ये राइड सेफ तो है? क्योंकि लाइसेंस प्लेटफॉर्म का मतलब यही है ना, दैट वेरीफाइड ड्राइवर्स होंगे, डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे, उनके अकाउंटेबिलिटी होगी इन एप्स की, और प्रॉपर रेगुलेटरी ओवरसाइट, ये सारा कुछ होगा। मतलब अगर आगे पीछे कुछ गलत हो जाए तो आपके पास एक पूरा बाकायदा एक सिस्टम है जो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। सो अगली बार जब आप कैब बुक करें तो चीपेस्ट राइड के साथ साथ थोड़ा सा लीगल राइड भी चूज करिएगा। फिलहाल के लिए तो आपकी सुबह वाली आदत माइक से तक आफरीन जुड़ गई है आपके साथ, आपकी कैब राइड की साथी 5000196 पर जरा जुड़ जाते हैं। गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं। और अगला गाना अरिजीत सिंह आपको सुना रहे हैं ना यहाँ पर।

0: खट खट
1: कौन है?
0: अज्जू।
1: अज्जू कौन?
0: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
1: खट खट हो दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है जैस्मिन सैंडलेस और सतिंदर सरताज की आवाज में ये गाना धुरंधर 2 से ये गाना एंड क्वाइट लिटरली आई फेल्ट के धुरंधर 2 के गाने अच्छे थे. वेल, ये गाना ऐसे ही थोड़ी बजाया मैंने भाई, इमरान ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी ये गाने की, इसीलिए हमने इनके दिन की शुरुआत इस गाने के साथ की है. और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं. श्याम सुंदर रेड्डी, आपको भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग यार. वेल, अगर आप सोच रहे हो कि भाई धुरंधर 2 की जहां आफरीन ने बात की है, और हम तो उनमें से है जो अब तक ये मूवी देखे ही नहीं है. अच्छा कि ये नहीं देखे हो भाई, आप देख लेना, OTT पर आ गई है, जियो हॉटस्टार पर है वैसे ये मूवी. और मैं उन लोगों में से हूँ जो थोड़ा सा ये मार धाड़ एक्शन से ना दूर ही रहती हूँ, मतलब ना ही OTT या स्क्रीन पर, रियल लाइफ में भी भाई मतलब हमसे ना हो पाएगा इतना सारा ड्रामा, इतना सारा. मैं उन टाइप की हूँ जो हेरा फेरी, गोलमाल, इस टाइप की पिक्चर में बड़ी एंजॉय करती हूँ. लेकिन वो लोग जो धुरंधर जैसी एक्शन ड्रामा और ये सारी चीजें मूवी ना एंजॉय करते हैं, देन धुरंधर इज ऑन OTT प्लेटफॉर्म, यू कैन गो एंड वॉच इट. फिलहाल के लिए तो आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. और अगर आपका हैप्पी बर्थडे है आज, लेट मी नो, जरा मस्त तरीके से यहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे. फिलहाल तो यार गुड मॉर्निंग के मैसेजेस और भी यहाँ पर आ रहे हैं. आई सी मैसेज फ्रॉम हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, वेरी गुड मॉर्निंग जी. प्रवीण का भी मैसेज आता है नेपाल से, मतलब है तो भाई आपको दोहा में ही है ना. सो वेल, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. अमित त्रिवेदी भाई, इनका मैसेज नहीं आया गुड मॉर्निंग का, ये गाना हमको सुनाने आए हैं. प्लेइंग वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स यार, पश्मीना. एक आपका फेवरेट, एक मेरा फेवरेट, ये सही है ना. माइक से दिल तक आप श्रीन के साथ बने रहिएगा. मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफ्टरनून का साथ है और घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:01 पर. अगला गाना मधुबंती बागची की आवाज में आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: देखिए वो नहीं देखते हम सोशल मीडिया पर, ट्रांजिशन रील्स, मेकओवर रील्स, ऐसे ही कुछ हुआ है हमारे कतर के नोट के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज की गर्मा गर्म खबर में क्या है देखते हैं।
1: खबर कतर,
0: देखिए खबर ऐसी है दैट कतर सेंट्रल बैंक ने फिफ्थ सीरीज के यानी 5, 10 और 50 रियाल नोट्स में कुछ डिजाइन अपडेट्स अनाउंस किए हैं। अब इन नोट्स पर आपको अपडेटेड स्टेट एम्बलम, अरेबिक न्यूमरल्स और इशू डेट नजर आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास पुराने वाले नोट्स है तो पैनिक बिल्कुल मत करिए भाई, वो पूरी तरह से वैलिड है और सर्कुलेशन में रहेंगे। मतलब ना बैंक भागने की जरूरत है, ना वॉलेट क्लीन अप कैंपेन शुरू करने की जरूरत है। और ये सोचकर आपको कहीं कुछ डेजा वो तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको आपके नोट्स बदलने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके जो 5, 10, 50 नोट्स बिल्कुल वैलिड रहेंगे। लेकिन जब नए नोट्स अब आपको मिलेंगे ना, तो थोड़ा सा जरूर देखना कि अरे अब ये वाला नया है, इसमें ये चेंजेस आए हैं, ऐसा कुछ। वेल, अगर आपने नोटिस किया होगा कतर क्वाइटली बट कंसिस्टेंटली अपने सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करता रहता है। अब वो चाहे डिजिटल सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट हो या करेंसी की डिजाइन, दैट्स आवर कतर फॉर अस। फिलहाल के लिए तो आप श्री हैं आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड विद मी माइक सिद्दल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milchi, burka.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। वो कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं मैं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले आ रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रह रहे हो?
2: मैं कहाँ रह रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: अरिजीत सिंह और जनिता गांधी की आवाज में जो गाना आप सुनने वाले हो, लैला मजनू मूवी से है। हाँ जी, अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी की ये अंडररेटेड रोमांटिक मूवी। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Well, what a beautiful gana, Arijit Singh और शिल्पा राव की आवाज में. अक्सर अरिजीत सिंह की आवाज ना एकदम शाइन आउट करती है, मतलब कोई भी अगर उनके साथ सिंगर होता है. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग आई फील जब शिल्पा राव स्टार्ट सिंगिंग, शी टेक्स दिस सॉन्ग टू सम अदर लेवल. एंड लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग अमिताभ भट्टाचार्य ने मैजिक ही किया है.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: वेलकम बैक ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और दोस्तों देखो, मैं आपसे अगर पूछूं कि दुनिया के टॉप 100 प्लेसेस में कतर की वो कौन सी जगह शामिल हुई है, तो शायद आप सुखवा के कतारा या नेशनल म्यूजियम का नाम लेंगे, है ना. लेकिन जो नाम आया है, आई एम श्योर यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. और आज की सबसे बड़ी खबर में कतर के लिए एक प्राउड

0: मूवमेंट है।
1: क्या खबर कतर?
0: देखिए खबर तो कुछ ऐसी है दैट कतर फाउंडेशन का लावा कलम MF हुसैन म्यूजियम अब ऑफिशियली टाइम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 की लिस्ट में शामिल हो गया है। एंड माय फ्रेंड्स, ये कोई छोटी बात नहीं है, है ना? टाइम मैगजीन हर साल दुनिया भर से सिर्फ 100 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस को चूज करती है और दोहा का ये म्यूजियम अब उसमें एक्सक्लूसिवली ये क्लब का हिस्सा बन गया है। और वैसे हम सब MF हुसैन को इंडिया के लेजेंडरी पेंटर के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी मुंबई में सिनेमा पोस्टर्स पेंट करके शुरू की थी। यस, कुछ रुपयों के लिए फिल्म होर्डिंग्स पेंट करने वाले हुसैन साहब आगे चलकर दुनिया के सबसे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट में शामिल हुए। एंड दैट्स व्हाट यू कॉल आई थिंक सो अ जर्नी फ्रॉम हसल टू हिस्ट्री, है ना? वेल, इस म्यूजियम का कॉन्सेप्ट स्केच खुद हुसैन साहब ने बनाया था। मतलब आप सिर्फ उनकी पेंटिंग्स नहीं देखते हैं वहां पर, बल्कि उनकी इमेजिनेशन के अंदर लिटरली वॉक करते हैं। यस, वेल, ये कतर की कल्चरल सॉफ्ट पावर का प्रूफ ही तो है दैट ये म्यूजियम का अचीवमेंट इतनी बड़ी बात है। देखिए, जब कोई मुल्क सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि आइडियाज, क्रिएटिविटी और कल्चर के लिए भी जाना जाता है ना, तो दैट इज व्हाट इज मोर पावरफुल, है ना? वेल, या शायद यहाँ पर यही कहा जाता है दैट एक आर्टिस्ट सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाता, कभी कभी वो पूरे शहरों की पहचान भी बना जाता है। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स, माइक से दिल तक। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ट्रैक, AR रहमान, बड़ी दयाल, तन्वी की आवाज में, ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Sex.
1: It's hot.
2: Bollywood Bordal.
3: Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
4: Only on Mirchi. It's hot.
5: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
6: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
7: वीडियो गेम बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
6: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
5: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
4: Only on Mirchi, it's hot.

0: परंपरा टंडन की आवाज में ये गाना राइट योर ऑन रिची मॉर्निंग्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक जी। मिर्ची मॉर्निंग्स पर वो वक्त हो चला है जहाँ पर आप और मैं मिलकर खेलने वाले हैं वो गेम जिसे मैं लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट तो कहती हूँ, लेकिन एक खास ना फरमाइश आई है, ठीक है। हमारे लिसनर है जिनका नाम है अरबाज, इनका कहना ये है कि भाई आफरीन ऐसा सवाल पूछो कि भाई इतना पूरा रास्ता कट जाए और मैं सोचते रहूं कि इसका जवाब क्या है। मतलब खास रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा डिफिकल्ट पूछो ना, मतलब मैं फिर से परेशान हो जाऊं कि इसका जवाब क्या है, मुझे इसका जवाब ना आए ऐसा कोई सवाल पूछो। ये भी कोई बात हुई, लेकिन चले ठीक है, इतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी वाला हमने सोचा आज आपसे सवाल पूछा ही जाए। तो मैं 1997 मतलब 90s की मूवी है भाई, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं 90s की मूवी। 1997 की मूवी का एक डायलॉग आपको यहाँ पर सुना रही हूँ और आपको गेस करना है कि आखिरकार आफरीन कौन सी मूवी की यहाँ पर बातें कर रही है। सो रेडियो सेट के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से आज का सीन सुनो।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: काजल, ये नेकलेस नया है, काफी महंगा लग रहा है। हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या, जिस चीज पर दिल आ गया सो खरीद ली।
0: All right. देखिए बहुत जबरदस्त मूवी है यहाँ पर एंड आई कांट बिलीव यू ऑलरेडी स्टार्टेड मैसेजिंग 5000186 इज माय नंबर। और मुझे लगा कि यार थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकर आई हूँ शायद, लेकिन नो नो नो नो नो नो, हमें सुनने वाले सारे लोग जो हैं वो बहुत बड़े फैन हैं बॉलीवुड के। एंड एट दिस मोमेंट यहाँ पर अरबाज खान जिसकी ये रिक्वेस्ट आई थी कि डिफिकल्ट वाला सवाल पूछे, उनका यहाँ पर मैसेज आता है कि भाई अब भी मुझे इसका जवाब नहीं आता है। मतलब इनके बिल्कुल गले में ये जवाब है और इनके मुंह पर नहीं आ रहा है। तो भाई आप ना कोई बॉलीवुड के फैन नहीं हो, मैंने यहाँ पर ऐलान कर लिया है। बट मीनवाइल आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस हियर। इम्पा का मैसेज आया है, राहुल गडकर का मैसेज आया है, कुंवर का मैसेज है एंड सो मेनी 5000186। आप यहाँ पर मैसेज कीजिएगा और तब तक के लिए अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ यहाँ पर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। विशाल मिश्रा की आवाज में ही अगला गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
1: उससे भी ज्यादा।
0: लॉटरी लग गई?
1: उससे भी बड़ा।
0: तो फिर बताओ।
1: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
2: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
3: अर्ज किया है
4: इरशाद। इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: खट खट
2: हू देयर
1: बनता
2: बनता हू
1: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को
2: खट खट हू देयर
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: वेल दुरान सिस्टर्स की आवाज में, सुल्ताना ज्योति की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन विची मॉर्निंग्स। और इतना तो मैं समझ गई हूँ भाई बंधुओं कि क्या इजी क्या डिफिकल्ट, सब एक सम्मान है आपके लिए, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका। और देखिए भाई, किसी की रिक्वेस्ट आई थी, अरबाज खान नाम के एक शख्सियत ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई डिफिकल्ट सवाल पूछो आफरीन, और मैंने कोशिश की डिफिकल्ट सवाल पूछने की, लेकिन उसका भी आपने आंसर दे दिया है। अब इसके बाद मुझे ये चाहिए यहाँ पर जवाब कि भाई आपको डिफिकल्टी लेवल और भी ज़्यादा चाहिए क्या, ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे 5000186 पर कि आफरीन यस थोड़ा सा और डिफिकल्ट जाए तो कल ना मैं और डिफिकल्ट सवाल लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए सवाल क्या था हमारा, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का, वो तो पहले सुन लेते हैं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: काजल, ये नेकलेस नया है, काफी महंगा लग रहा है। हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या, जिस चीज पर दिल आ गया सो खरीद ली।
0: हाय हाय, हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता है क्या, मतलब यार एपिक एक्टिंग थी इस बंदे की इसमें। कौन सी मूवी है ये मैं नहीं बताऊंगी, चलिए डायरेक्टली लेट्स जंप टू द आंसर्स।
3: हाय आफरीन,
0: हाय, वेरी गुड मॉर्निंग,
3: जुदाई।
0: ऑल राइट,
3: माय नेम इज सईद रोशन।
0: ओके,
4: हाय आफरीन, मूवी नेम इज जुदाई।
0: दैट्स राइट,
5: जुदाई फिल्म का।
0: ओके,
5: अनिल कपूर, हां जी, मातोकर,
0: बिल्कुल सही। हाँ जी,
6: the name of the movie is Judai,
0: हाँ,
6: and the protagonist is Sridevi, Anil Kapoor and Urmila Matondkar.
0: That is right. वालेकुम अस्सलाम।
7: इस पिक्चर का नाम है जुदाई, इस फिल्म में थे, मेरा नाम आरिफ खान है।
0: बिल्कुल सही आरिफ खान जी, और साथ ही साथ जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया है, अरबाज खान, मनीष, धीरज, लियास, चीनू, श्याम सुंदर, कुंवर, इम्पा, उपेंद्र शर्मा, किरमानी, मोहम्मद यूसुफ खान, ये सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है दैट दिस मूवी इज जुदाई। श्रीदेवी, अनिल कपूर, उर्मिला मातोंडकर, एंड इस पूरी मूवी में श्रीदेवी का किरदार वॉज जस्ट वन साइडेड, मतलब क्या एक्टिंग की है भाई उसने। एंड ऑल्सो अलॉन्ग साइड परेश रावल की एक्टिंग भी इसमें बड़े मजेदार थी। याद है आपको परेश रावल का वो कैरेक्टर जो बहुत सारे सवाल पूछता था। सोहेल, कविता कृष्णमूर्ति और शाशा त्रिपति की आवाज है। थोड़ा सा श्रीदेवी का तड़का, थोड़ा सा विद्या बालन का तड़का इस गाने में। राइट, माइक से दिल तक आप ट्रीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका. आफरीन के साथ में हो आप और फिलहाल मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 8 एग्जैक्टली. और कमिंग अप नेक्स्ट टाइटल ट्रैक ऑफ दिस मूवी वेलकम टू द जंगल. और जंगल के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर. मिर्ची फ्रेश माल.
2: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक.

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेलकम का ये गाना एंड लेट मी टेल यू दिस इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस मूवी वेलकम। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, हम मिलेनियल्स की ना इमोशंस जुड़े हुए हैं वेलकम मूवी से। स्पेशली भाई मजनू भाई की पेंटिंग कैसे भूल सकते हैं हम, फिर हमारे नाना पाटेकर का वो डायलॉग कैसे भूल सकते हैं हम, आलू ले लो, और परेश रावल की कॉमेडी आई हाय। आई रियली डोंट रिमेम्बर वेलकम टू, मतलब मेरे ख्याल में मुझे इतना ही याद है कि उसमें जॉन अब्राहम थे। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस स्टोरी एंड एवरीथिंग। मतलब जो इम्पैक्ट वेलकम पार्ट वन डे, मतलब जो फर्स्ट वाली थी, उसने डाला था, उसके जो डायलॉग्स थे, उसकी जो सारी मूवी की स्टोरी लाइन थी, इट वॉज एब्सोल्युटली हिलेरियस। और इट इज अ रिस्क, आई एम टेलिंग यू, यू आर प्लेइंग विद फायर कि आप इतने कल्ट क्लासिक मूवीज को उठाकर उसका पार्ट 2-3 बनाते हो, बहुत बड़ा रिस्क है भाई साहब। अब ये रिस्क में अकेले ये मौजूद नहीं अक्षय कुमार, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। पहले तो बता दूं भाई, डायरेक्टर साहब जो इस मूवी के हैं वेलकम टू द जंगल, अब ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ये अहमद खान है। यस, वही अहमद खान जो कोरियोग्राफर है। अब एज अ डायरेक्टर बतौर ये कैसे रहेंगे, ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यार ये मूवी का मुझे भेलपूरी ज्यादा लग रही है, इतना बड़ा स्टारकास्ट कि मेरा शो खत्म हो जाएगा। चलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट स्टारकास्ट बता दूं वेलकम टू द जंगल के। अक्षय कुमार और अनिल कपूर तो है ही, लेकिन यू नो वॉट, नाना पाटेकर नहीं है इसमें, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, तुषार कपूर हैज सम सीरियस डायलॉग्स एज वेल, श्रेयस तलपड़े, परेश रावल, राजपाल यादव, बॉबी देओल एज वेल, ओ माय गॉड, आफताब शिवदासानी, सो मेनी। डू यू आल्सो बिलीव कि इसमें दलेर पाजी, यानी दलेर मेहंदी और मीका सिंह भी है। आई डोंट नो किस रूप में है, क्या है, और ये तो सिर्फ हीरोज की बात की मैंने, हीरोइंस की भी बड़ी लाइन है भाई, दिशा पटनानी, पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता, रवीना टंडन, ओ माई गॉड, आई टोल्ड यू माई शो विल गेट ओवर एंड दिस लिस्ट इज स्टिल नॉट ओवर। कैसा एक 2-2.5 घंटे की मूवी में सभी को क्या 20 सेकेंड का स्क्रीन टाइम मिलने वाला है, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट समथिंग इज गोना हैपन, एंड दैट इज ऑन June 24th, मतलब यही महीने में ये मूवी रिलीज हो रही है वेलकम टू द जंगल। वैसे बताओ क्या आप ये मूवी देखने जाओगे, 5000-1896। वैसे मेरी तो बड़ी क्रेविंग हो रही है कि यार बहुत टाइम से कोई कॉमेडी मूवी आई नहीं है, एंड फिंगर्स क्रॉस, आई रियली होप दिस वन इज वर्थ वॉचिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, अरिजीत सिंह की आवाज, माइक से जलता गाफरीन के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gambana. Burca, burca. La vie est la burca. Milci, burca.
2: हेलो
3: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
3: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
3: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
3: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
3: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा।
2: बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा।

0: दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
1: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा।
0: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई,
1: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा। उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
0: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी।
1: हाँ जी,
0: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है। मैंने तो बस सूचित करना था, करने मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: गलती होगी साहब जी,
0: गलती होगी साहब जी, कान पकड़
1: पकड़ ले,
0: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मिका सिंह और शेफाली की आवाज में ये गाना सुबह होने ना दे। और बॉस सुबह हो गई है ना हमारी, तो चले काम की बात कर ले। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलिए जरा देखते हैं आईपी के एक्सचेंज रेट्स आज क्या कहते हैं। देखिए एक्सचेंज रेट ये कह रहा है कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.13, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.76। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.70 पर है, वेर एज श्रीलंकन रुपीस इज एट 92.14। भाई साहब एकदम बढ़ गया है ये तो। उसके अलावा नेपाली रुपीस की बात करें तो 41.84 पर है। ऑल इन ऑल ये थे आज के एक्सचेंज रेट आईपे के। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

पास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: दोस्ती कहीं कुछ सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
3: खूब मिलेगा, मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Mirchi Mornings पर आफ्टरीन है आपके साथ, and that was विशाल ददलानी और शालमली की आवाज में ये गाना, writer on Mirchi. आज ना मेरे जो क्वेश्चन पूछने की स्किल्स पर सवाल उठाया गया है वो कुछ इस तरह से है कि यार आफरीन, इतना भी इजी सवाल ना पूछा करो. तो मैंने सोचा चलो फिर से, मैंने थोड़ी देर पहले जब 7 बजे के आवर में 7:30 बजे सवाल पूछा था, मुझे लगा वो डिफिकल्ट है, लेकिन भाई साहब आप लोग तो नेक्स्ट लेवल बॉलीवुड फैंस है, यू फटाफट से आंसर दे देते हो. सो नाउ आई हैव अनदर सवाल, बॉलीवुड का सवाल है, मूवी की कहानी सुनाने वाली हूँ एंड यू हैव टू गेस वॉस कौन सी मूवी है ये. और जहां तक मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों ने ये मूवी देखी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी इज लिटिल पॉपुलर. ठीक है, सो कहानी कुछ ऐसी है. एक रिच दिल्ली गर्ल है जिसकी फेवरेट हॉबी है शॉपिंग नहीं करना, दूसरों की लव लाइफ मैनेज करना. उसे लगता है कि वो खुद क्यूपिड, लाइफ कोच, स्टाइलिस्ट और रिलेशनशिप कंसल्टेंट, सब कुछ एक साथ. वो एक सिंपल लड़की को मेकओवर देती है, उसके लिए परफेक्ट बॉयफ्रेंड ढूंढती है, फ्रेंड्स की मैचमेकिंग करती है और हर सिचुएशन में इंटरफेयर करती है. प्रॉब्लम ये है कि जितना वो दूसरों की लाइफ ऑर्गेनाइज करती है ना, उतनी ही अपनी लाइफ उसकी मैसी हो जाती है. और सबसे फनी पार्ट, जो लड़का उसे सबसे ज्यादा इरिटेट करता है वही उसे सबसे अच्छी तरह से समझता है. बताइए बताइए कौन सी मूवी की बात कर रही है आप. 5001896 is my number here. और ये कोई इतनी पुरानी मूवी भी नहीं है और ये इतनी कोई नई मूवी भी नहीं है. एग्जैक्टली बताऊं तो ये मूवी जो है ये आई थी साल 2010 में. ठीक है, और ये मूवी में जो एक्ट्रेस है ना, उसने ना बहुत अच्छे कपड़े पहने थे. अब बताइए कौन सी मूवी है. एक छोटा सा हिंट ये भी देती हूँ कि देओल फैमिली का लड़का भी इस मूवी में है. बस बताइए. 5001896 इज माई नंबर, आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा. तब तक के लिए जसलीन रॉयल, हर्षदीप कौर की आवाज में अगला गाना ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Only on Mirchi, it's hot.
3: अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद।

भाई आ गई, कहाँ जाऊंगी, यही तो हूँ आपके साथ सुबह 6 बजे से हुए इनफैक्ट। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्च मॉर्निंग्स। अच्छा जी, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा था और मुझे आज बड़ा मजा आ रहा है। मतलब यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान का कहना है कि आफरीन आज खेल गई सभी बॉलीवुड बफ के साथ, जो गुगली फेंकी है क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा है कि यार दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी है। सो वेल, मूवी मैंने ऐसी कहानी सुनाई थी जिस भाई जो बॉलीवुड के फैन है उन्हें तो कौन सी भी मूवी बता दो वो तो बता ही देते हैं, लेकिन जो ऐसे मीडियोकर्स है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, अब आप अगर अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये कहानी सुनो और बताओ भाई आखिर कौन सी मूवी बता रही है आफरीन। सो वेल, कहानी कुछ ऐसी है, एक रिच दिल्ली गर्ल है जिसकी फेवरेट हॉबी शॉपिंग करना नहीं है, दूसरों की लव लाइफ मैनेज करना है। उसे लगता है कि वो क्यूपिड, लाइफ कोच, स्टाइलिस्ट और रिलेशनशिप कंसल्टेंट सब कुछ एक साथ है। वो एक सिंपल लड़की को मेकओवर देती है, उसके लिए परफेक्ट बॉयफ्रेंड ढूंढती है, फ्रेंड्स की मैच मेकिंग करती है और हर सिचुएशन में इंटरफेयर करती है। प्रॉब्लम ये है कि जितना वो दूसरों की लाइफ ऑर्गेनाइज करती है ना, उतनी ही अपनी लाइफ उसकी मैसी होती जाती है। और सबसे फनी बात, जो लड़का उसे सबसे ज्यादा इरिटेट करता है वही उसे सबसे अच्छी तरह से समझता है। बताइए कौन सी मूवी है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, 5000 1896 यहाँ पर जाहिद का मैसेज है, देन आई हैव ताहिर मैसेजिंग यर, देन आई हैव इनका नाम क्या है रिजुल हसन, इनका भी मैसेज आया, योर कंटिन्यूड लिसनर, थैंक यू सो मच। या उसके अलावा यहाँ और ये कौन है, अहमद मोहम्मद, इनका भी मैसेज आया है और सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है दैट आफरीन, ये जो मूवी की बात कर रही हो ना तुम, ये मूवी है आयशा कुंवर। डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो, भाई कोई बात नहीं। सो वेल, विद दिस आयशा मूवी का गाना आपके लिए तोशी रायना की आवाज में। भाई मूवी आप जानो ना जानो लेकिन ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था, अब याद आया भाई, मिठी मिठी गल करते हुए मीठा मीठा गाना आपके लिए, माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: वेल खान साहब और शाशो सचदेव की आवाज में ये गाना धुरंधर से ये गाना एंड दिस इज पार्ट टू ऐसे एंड पार्ट टू के गाने एक्चुअली मुझे अच्छे लगे थे। वीन वाइल मैं हूँ आफरीन आपके साथ। मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:08 की तरफ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और क्योंकि हम जून के महीने में आ गए हैं और धीरे धीरे से वो वक्त आने वाला है जहां पर कतर से लोग गायब होने वाले हैं। और वो कैसे? जानती हूँ आप भी ये लिस्ट में शायद शामिल होंगे यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि कुछ ही दिनों में अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। यस, इट्स 8th of June ऑलरेडी एंड कई सारे स्कूल्स में एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, कहीं पर एग्जाम्स चल रही हैं। अब जब एग्जाम्स चलती है ना, ये बच्चों से ज्यादा मम्मीज की एग्जाम्स होती है भाई। घर का माहौल जिस तरह से होता है, ओ माई गॉड, और वो ये सब कुछ रिलैक्स होएगा अब कुछ ही दिनों में। आई थिंक सो मिड जून तक सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा और उसके बाद चलेगी शॉपिंग, उसके बाद होगी पैकिंग। और भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? आई वॉन्ट टू नो दैट वॉट इज योर समर वेकेशन प्लान्स इन कतर। 5001896 इज माई व्हाट्सएप नंबर के भाई आप लोग कहीं जाने वाले हो या फिर नहीं जा रहे हो तो भी बताओ मुझे, क्योंकि जो नहीं जाने वाले रहते हैं ना उनका फायदा आफरीन करवाती है। और वो कैसे? वो ऐसे कि आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी कि भाई कौन सी जगह पर फिर आप बच्चों को एंटरटेन कर सकते हो। हमारे कतर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं भाई, वो टॉय फेस्टिवल तो हमेशा आता ही है इस वक्त पर, और इसके अलावा कलर वर्स करके कतारा में भी कुछ आया है। ये सब क्या है ये सब बताएंगे ना हम यहाँ पर ही मिर्ची मॉर्निंग्स पर। यू गॉट टू स्टे ट्यून विद मी, तब तक के लिए 5001896 इज माई नंबर। लेट मी नो वॉट इज योर वीकेंड प्लान। वीकेंड नहीं, वेकेशन प्लान। वीकेंड तो भाई आते रहता है, वेकेशन साल में एक बार आता है ना। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में यह अगला गाना बने रहेगा माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: मैडम डिस्टर्बेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टर्बेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टर्बेंस अभी आ रही है?
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ आपके।
3: हेलो
4: मैडम डिस्टर्बेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टर्बेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टर्बेंस अभी आ रही है?

0: हैं मोबाइल पे?
1: और क्या,
0: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही हैं?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
0: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
0: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है? दिमाग खराब,
0: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
0: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
0: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
2: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो, मेरा ख्याल तो ये है कि घर में किसी भी मॉम को देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, एक चीज इनमें कॉमन होती है, इनकी नजर ना हर जगह होती है। वो कहते हैं ना, बिल्कुल पार्क ही नजर, ऐसी सुपर पावर है सारी मॉम्स में। बच्चा चुप हो तो क्यों चुप है, ज्यादा चुप है तो भी क्यों चुप है, होमवर्क हुआ है या नहीं, घर में क्या खत्म होने वाला है, मॉम्स की ऑब्जर्वेशन पावर तो नेक्स्ट लेवल होती है। इसीलिए हम आज बात करेंगे आंखों के बारे में। जी हाँ, मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के प्राउड पार्टनर है अल फहद ऑप्टिक्स, जहां आपको मिलता है क्लियर विजन, स्टाइलिश फैशन और परफेक्ट प्राइस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर काफी टाइम से आई चेकअप पोस्टपोन कर रहे हैं ना, तो ये एक फ्रेंडली रिमाइंडर समझ लीजिए। अल फहद ऑप्टिक्स पर अवेलेबल है फ्री आई चेकअप एट एनी ब्रांच अक्रॉस कतर। साथ ही वो है डायरेक्ट पार्टनर विद अल कूत इंश्योरेंस, इस वजह से आपकी जो आई केयर जर्नी है वो और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी। तो चाहे आप मॉमी हो, डैडी हो, या बस अपनी आई साइट को थोड़ा अटेंशन देना चाहते हो, विजिट अल फहद ऑप्टिक्स, ऑल ओवर कतर ये अवेलेबल है। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, you stay tuned with me on Mirchi, it's hot.

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner, Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ. एलिगेंट डिजाइन्स, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जिंदगी में ऐसे कई बार हुआ है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हुए भी खाली सा लगता है, लेकिन एक शख्स भी अगर आपके पास आपके करीब हो ऐसा कोई, तो ऐसा लगता है कि सारा जहान आपके साथ है। आज है वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड डे। वैसे तो फ्रेंडशिप डे हम बहुत अरसों से मनाते आए हैं स्कूल कॉलेज से, लेकिन वो जिंदगी में एक दोस्त भी अगर हो ना जो आप क्यों बस इन एंड आउट समझ ले, बस काफी है ना। आप भले ही वो स्कूल के बेंच का पार्टनर हो सकता है, कभी कॉलोनी में साइकिल रेस लगाने वाला दोस्त हो सकता है, तो कभी कॉलेज की कैंटीन में घंटों स्पेंड करने वाला यार, या फिर कभी ऑफिस का वो कलीग जो कलीग से ज्यादा थेरेपिस्ट लगता है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलग अलग लोग मिलते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये हमेशा साथ होते हैं। वेल, आज वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड के दिन डे के दिन मैंने सोचा कि आज की शायरी दोस्तों के नाम।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: शायरी तो अर्ज किया है, हर रिश्ता नामों का मोहताज नहीं होता, हर साथ खून का रिश्ता नहीं होता। हर रिश्ता नामों का मोहताज नहीं होता, हर साथ खून का रिश्ता नहीं होता। जिंदगी में एक शख्स जरूर मिलता है जो दोस्त कम और सुकून ज्यादा होता है। तो बस आज की ये शायरी आपके दोस्त के नाम। और ऐसे दोस्त होते हैं ना जो सालों से बात नहीं होती है, बट लेकिन जब भी बात होती है ना वो इक्वेशन वही रहती है जो आप कितने साल पहले छोड़ आए हैं। तो आज अगर बात नहीं हुई है तो मौका है, वो दस्तूर है, और कॉल कर लीजिए और बस ऐवाई वो पुरानी किस्से यादें याद कीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ अनमिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
2: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolder.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: खट खट,
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: राजी मूवी से ये गाना, हर्षदीप कौर की आवाज़, विभा सरफ का साथ. व्हाट अ फेनोमिनल मूवी एंड एक्टिंग आलिया भट्ट, यू डिड. वेलकम बैक जी, वेलकम बैक. स्वागत है आपका राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स. वेल, स्वागत तो करने का वक्त किसी और का हो चला है यहाँ पर, बट लेकिन यहाँ पर मेरा जाने का, अलविदा कहने का वक्त आ गया है. भाई आज है 8th of June, मंडे का दिन है, और स्वागत करने के लिए जो मोहतरमा यहाँ पर आने वाली है वो आ गई है. हाँ जी मोहतरमा.
1: देखो मुझे पता था कि तुम जाने वाली हो.
0: हाँ जी.
1: बिना मिले मैं जाऊंगी नहीं.
0: वो तो मैं भी नहीं जाऊंगी ना, मतलब मैं तुम्हारे आने तक यहाँ पर स्टूडियो तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ ना, किसी और के हवाले के थोड़ी थोड़ी कर सकती हूँ, तुम्हारे हवाले करना है.
1: वो एक ट्रस्ट होता है, पता है, हमें पता होता है
0: तेरे हवाले कर दिया.
1: ज्यादा खूबसूरत ना कोई गाना नहीं.
0: आई नो, सीरियसली. वैसे पता है क्या, आज मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, आज है वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड डे. मतलब फ्रेंडशिप डे वगैरह तो मनाते हैं, जस्ट वन फ्रेंड.
1: ओके,
0: आज कोई फ्रेंड का नाम लेना चाहोगे, जस्ट वन, इफ यू हैड अ फ्रेंड.
1: और बेस्ट बडी, आई मीन एट द मोमेंट, आई मीन सी, स्कूल टाइम की जो मेरी एक दोस्त रही है, उसका नाम है मोना खनुजा. शी यूज्ड टू बी अ पंजाबी गर्ल, अ वेरी लवली गर्ल.
0: ओके,
1: शी यूज्ड टू बी द क्लास टॉपर. वो फर्स्ट आती थी और मैं सेकंड आती थी, एंड ये सिलसिला जो है पूरा चला है 6th grade से लेकर 10th grade तक.
0: वाओ.
1: एंड आफ्टरवर्ड शी मूव टू कॉमर्स एंड आई मूव टू साइंस. लेकिन यार वो जो दोस्ती है ना,
0: सो यू आर इन टच,
1: ऑफकोर्स,
0: है ना. हाँ यही होता है.
1: सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, इट वाज हर बर्थडे दिस वीक. सो खूबसूरत रिश्ता. स्कूल कॉलेज टाइम की जो यारी होती थी ना यार, बिना किसी मतलब की, वो दिल वाली यारी, वो बात ही अलग थी यार.
0: ट्रू. बस तो इसके साथ, ये अंशु के फ्रेंडशिप के साथ, आपको भी मेरे ख्याल से कोई फ्रेंड याद आ रहा है स्कूल का, है ना. जैसे इसने कहा बताओ फिर कौन है, तो हम भी यहाँ पर, अंशु यहाँ पर ये कर लेगी, उन्हें ऑनर करेगी, बेस्ट फ्रेंड है ना.
1: 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देन. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर.
0: यस,
1: मिर्ची आफरीन, मिर्ची अंशु.
0: तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा. और सुनते रहेगा माइक से दिल तक आफरीन एंड अंशु को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: वेल आई पी सिंह एंड जॉनिता गांधी की खूबसूरत सी आवाज़ असीस स्क्वायर का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। भाई आपने एक ट्रेंड नोटिस किया है, पुराना जमाना पुराना दौर हर तौर तरह से एक बार फिर से हमारी जिंदगी में शामिल हो रहा है।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ ही चुकी हूँ। वेल अगर आज के वक्त को देखने की कोशिश करूँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गानों से, क्योंकि बस अभी अभी एक गाना मैंने आपको सुनाया जो कि एक रिक्रिएटेड रीप्राइज्ड वर्जन है, और कहीं ना कहीं हम 90s के एरा में फिर से गए। एंड अगर आज के दौर को देखोगे तो वो ज़माना फिर से आ गया है कि ना जाने ऐसे कितने सारे गाने हैं जो हमें फिर से जीने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, और हमें फील होता है कि भैया ये तो हमारे वक्त का गाना है। एंड आज के बच्चे कहते हैं ये तो हमारे वक्त का है। लेकिन अगर मैं कपड़ों की भी बात करूँ, ड्रेसिंग की भी बात करूँ, चलिए एक फैब्रिक पे नज़र डालते हैं, दैट इज़ ऑर्गेन्जा। एक टाइम था जब ऑर्गेन्जा इतना ज़्यादा बूम में था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड 2000s, अर्ली 2000s। उसके बाद ग्रेजुअली ऑर्गेन्जा का क्रेज़ जो है वो ज़रा कम हुआ। एंड अगर आज के डेट में अगर आप फिर से देखेंगे तो ऑर्गेन्जा जो है एक बहुत ही प्रीमियम फैब्रिक के तौर पर हमारे बीच आ चुका है। नॉट जस्ट ऑर्गेन्जा, शिफॉन की अगर आप साड़ियों की बात करें, शिफॉन की साड़ियों का कुछ ऐसा क्रेज़ हुआ करता था कि भाई कुछ नहीं चाहिए, शिफॉन मतलब शिफॉन की साड़ी पहनी हुई है। उसके बाद जॉर्जेट आया, उसने टेक ओवर किया, सिल्क, कोसा सिल्क, बहुत सारे दूसरे फैब्रिक्स आए। लेकिन एक बार फिर से आज के डेट में बूमिंग अगर कोई है तो वो है शिफॉन। यार मतलब ये जो है ना लाइफ का सर्कल है, कुछ चीज़ें जो पुराने दौर में होती हैं, पुराने वक्त में होती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, लेकिन घड़ी के उस कांटे की तरह हम ऊपर से जाकर नीचे आते हुए एक बार फिर से उसी पॉइंट पर ज़रूर पहुँचते हैं। तो लाइफ जो है हमें यही लेसन शायद सिखाती है कि वक्त कभी एक सा नहीं होता। आज आप पीक में हैं, धीरे धीरे शायद उस ऊंचाई को आप और छूने की कोशिश करेंगे, एक वक्त आएगा शायद आपको लगेगा कि आप ज़रा से नीचे आ रहे हैं, लेकिन फिर से वो सर्कल ऊपर आएगा और आपका अच्छा दौर जो है ना ज़िंदगी का वो ज़रूर आएगा। चलिए जी, इसी थॉट के साथ करते हैं मीठी मिर्ची की शुरुआत। अमाल मलिक की आवाज़, अरिजीत सिंह का साथ, अगला गाना एन्जॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: fiesta la burga. Mirchi, burga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे अब उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ियां आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। जो आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Our business is our business, none of your business.
5: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
6: Qatar का number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Well, Benny Deol ki power pack awaaz Shilpa Rao ke saath Vishal Shekhar ki composition. What a gazab behtareen gana it is. Ye power pack track to maine aapko suna diya. Is waqt ye bata do, mirchi ghadi mein baj rahe hain 10:22.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Dekho yaar, aawajahi jo hai ab aur bhi zyada aasan hone lagegi.
2: Mirchi Anshu.
0: Hey, very good morning. Welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ ही चुकी हूँ. Well, इस वक्त अगर हम कतर एयरवेज की बात करें या तो फिर हमारी नेशनल एयरलाइंस की तरफ नज़र डालें तो इतना समझ आइए कि ग्रेजुअली कन्वीनियंस जो है ट्रैवलिंग के पर्सपेक्टिव में अब हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जा रही है. इस वक्त हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कतर एयरवेज ने अनाउंस किया है कि अगर हम यूएई की बात करें, मतलब पड़ोसियों के घर अगर आपको जाना है तो बात इतनी है, अब दुबई के लिए हर दिन आपके पास 5 फ्लाइट्स अवेलेबल हैं. बिल्कुल यार, ग्रेजुअली नंबर्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं. इनफैक्ट अगर आपसे कुछ दिन पहले की मैं बात करूँ, सो आई वुड सी देयर वर अराउंड 3 ऑप्शंस इन अ डे, बट अब जो ये ऑप्शंस को बढ़ाकर 5 कर दिया गया. धीरे धीरे एयर स्पेस जो है ओपन होते जा रहा है, फ्लाइट्स के ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसके चलते कन्वीनियंस जो है ये भी हमारी जिंदगी में बढ़ते जा रही है. मैं तो यही कहना चाहूंगी, अपने इस पड़ोसी के घर जाते हो कभी मिर्ची कभी नींबू लेने तो भैया बाजू वालों के यहाँ चले जाओ, बुर्ज खलीफा अगर घूम के आओ तो वो बस जो एक मॉन्यूमेंट मिलता है ना, एक ट्रेजर के तौर पर मेरे लिए जरूर लेके आना. नहीं, टेंशन मत लो, इन रिटर्न आपको रेडियो में अच्छी तरह से एंटरटेन करने का काम जो है मैं पक्का करूंगी. भाई, आई हैपन टू विजिट दुबई लास्ट वीक, आई हैड एन इवेंट. क्या गर्मी है यार, सॉलिड गर्मी है. मतलब जितनी गर्मी हमारे घर है ना उतनी पड़ोसियों के घर है. हाय, कलेजे में ठंडक जो है ना जरूर मिली. क्या है ना, वो बच्चे की आदत होती है, खुद के नंबर कम आए तो उसे दुख नहीं होता, खुशी होती है जब ये पता चल जाए कि हाँ मेरे दोस्त के नंबर जो है ना वो भी कम ही आए हैं. तो जब देखा कि वहाँ पे भी गर्मी भरपूर है तब कलेजे को जो है वो ठंडक मिली गई. लेकिन मेरी आवाज़ से आपकी कलेजे में अगर इस वक्त ठंडक मिल रही है, आ रही है, तो मुझे बता दो यार. 5000 1896 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस. कम ऑन यार, इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल बंजारी की आवाज़, प्यारा सा गाना, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
2: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
1: हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ज्योतिषा शर्मा की खूबसूरत सी आवाज और पावर पैक ट्रैक इट इज भाई, ये गाना वो जरूर है जिसमें फरहान अख्तर के तड़के ने हमें मजबूर किया कि इसका हुक स्टेप तो हमें सीखना ही सीखना है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajay Anshu with you. ये power pack track मैंने आपको सुनाया from the film दिल धड़कने दो. लेकिन एक बात क्या आपको पता है, इस गाने के अगर lyrics की मैं बात करूँ तो इसे लिखा भी जावेद अख्तर ने ही है. क्या बात है जी, अख्तर साहब ने लिखा, उनके बेटे अख्तर साहब ने इसे गाया और शंकर महादेवन का क्या गजब का इसमें तड़का. चलिए, ये खूबसूरत सा पावर पैक ट्रैक तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब जो है कुछ और सुनाने की तैयारी मैं कर ही लूँ. हैविंग सेड दैट, एक बार फिर से वक्त हो चला है कि आप और हम मिलकर खेल लें आज का.
2: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट.
3: ओके सर।
0: एक काम करते हैं, एक बार फिर से आपकी मेमोरी को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना आज किसी धुन के जरिए नहीं बल्कि किसी बातचीत के जरिए. इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन जिसे आप सुनेंगे. 90s की कोई तो बहुत ही खास फिल्म है जिसका ये कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है. आपको सुनना, आइडेंटिफाई कर बस मुझे फटाफट से ये बताना है कि ये है तो किस एक्टर की आवाज है, एंड साथ ही आपने अगर ये डायलॉग सुना तो किस फिल्म में सुना. बड़ा ही इमोशनल यार, बड़ा ही प्यारा है, हाय दिल को छू लेने वाला है. ज्यादा मैं कहूं उससे ज्यादा आप कहें वो बेटर होगा. 5000 1896. आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल हियर वी गो.
4: जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपया है. 500 करोड़. जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा, तुम सोच भी नहीं सकती. मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था. लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देख.
0: हाय, देखो कुछ समझ में आया ना आया, एक बात तो तय है, अगर जिंदगी में 50 पैसे से 500 करोड़ का सफर अगर तय करना है तो जिंदगी में एक बार ब्रेकअप करना जरूरी है. नहीं, जस्ट सेइंग. फटाफट से बताएं यार, ये है तो है किस फिल्म से, बड़ी पॉपुलर सी फिल्म है. 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल सुनने का मैं श्रेया घोषाल की आवाज, एंड टेंशन नहीं यार, मैं हूं ना.

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
2: कौन है?
3: स्टेन।
2: स्टेन कौन?
3: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
4: खट खट, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: आवाज परंपरा टंडन का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म. ओफ यार, एक ऐसी फिल्म जिसने दो उभरते हुए कलाकारों की जिंदगी में इतनी सारी रोशनी लेकर आई. आई एम टॉकिंग अबाउट अनीत पड्डा एंड साथ में अहान पांडे. अब फिल्म कौन सी है ये आप बता दो. इस फिल्म की तो बात हो गई, लेकिन इस वक्त आपको एक बार फिर से उस फिल्म से रूबरू कराएं जिसकी कोई तो दास्तां आपसे कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी. अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश किया था एक डायलॉग, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से. नाउ फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, मैं जल्दी से वो डायलॉग एक बार फिर से सुनाती हूँ. अगर आपको लगे अभी भी सुनते सुनते आपने पहचान ही लिया है तो जल्दी से करेक्ट आंसर भेज देना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000186. वी विल गेट कनेक्टेड देयर एंड हियर वी गो.
1: जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है. 500 करोड़, जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा.
0: भाई साहब, एक लड़की आपसे वो सारे काम करवा लेती है जो पूरी दुनिया में ताकत नहीं ये आपसे करवा पाए. अब देखें लोगों का क्या कहना है. ये कौन सी फिल्म से है?
2: Hi Anshu, this is Sunil Shetty, but I forget the movie names. Sunil Shetty and Akshay Kumar. What are actors in these movies?
0: आपने जिन एक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया ये पूरी तरह से सही है. जितने लोगों ने लिखकर जवाब देखा उनका भी पूरी तरह से सही है अगर इस फिल्म की हम बात करें. सो इट इज धड़कन. थैंक यू फैजल, थैंक यू यूसुफ भाई, थैंक यू समीरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर रिप्लाई. दाइक साहब, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल दोज वंडरफुल पीपल हु रिस्पॉन्डेड बाय मैसेजेस. तहे दिल से आपका शुक्रिया. बिल्कुल, अगर इस फिल्म को हम अगर हम देखने की कोशिश करें तो साल 2000 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की धड़कन जरूर बन गई. इसे डायरेक्ट किया धर्मेश दर्शन ने एंड साथ ही इसे प्रोड्यूस किया रतन जैन ने. एंड इस फिल्म में अगर हमें कोई नजर आए तो वो है तीन यादगार चेहरे, यानी कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड शिल्पा शेट्टी. स्पेशल अपीयरेंस में महिमा चौधरी. यार अगर म्यूजिक को देखें, सो म्यूजिक था बाय लेजेंडरी डुओ नदीम श्रवण. लेकिन पता है क्या, इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि धड़कन का म्यूजिक लगभग 3 साल में तैयार हुआ. ठीक सुना आपने, दूल्हे का सहरा. अगर इस गाने की कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये तो फिल्म के रिलीज के काफी पहले हो चुका था, लेकिन इसका जो टाइटल ट्रैक है इसे लंदन में बाद में शूट किया गया, इसीलिए शायद इस एल्बम में अलग ही डेप्थ एंड इमोशन है. और अगर फिल्म की कहानी की इंटरेस्टिंग बात आपको बताने की कोशिश करूं, सो इनिशियली ये सोचा गया था कि देव का जो किरदार है, यानी कि सुनील शेट्टी का जो ये किरदार है, उसे जिंदा ही ना रखेंगे. लेकिन फिर फाइनली डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि भाई क्यों लोगों को आंसुओं के साथ थिएटर से विदा किया जाए. धड़कन जब फिल्म का नाम है तो यार हर एक किरदार की धड़कन जो है वो बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. देव को ना ही सिर्फ अपने इस किरदार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन एक अधूरा आशिक हम सब के दिल में अलग तरह से कन बनकर बस बैठ ही गया. चलिए अगर मैं आपसे पूछूं तो इस फिल्म में आपको किसका कैरेक्टर ज्यादा प्रोफाउंड एंड प्रोलिफिक लगा, यू नो व्हिच इज द कैरेक्टर दैट यू कैन रिलेट विद. वाज इट अक्षय कुमार और वाज इट सुनील शेट्टी. 5000186 5000186. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड मीनवाइल अभिजीत एंड अलका याग्निक की आवाज में इस फिल्म का टाइटल ट्रैक आपके लिए एंजॉय. बंदी का नाम अंश.

0: लेकिन ना, नैना का कोई कसूर नहीं, अब हम करें तो क्या ही करें।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विद यू। आप सभी का एक बार फिर से दिल वाला स्वागत आपकी जिंदगी में। मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ चुकी हूँ, लेकिन फाइनली कल से कतर में अगर कुछ होने वाला है तो वो है बज। किस चीज़ का भाई? जिन बातों का हमें बेसब्री से इंतजार था उनकी शुरुआत अब कतर में होने जा रही है। मैसिव इवेंट्स की आप बात करें, मैग्नानिमस कॉन्फ्रेंसिस की बात करें, ये सेक्टर एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुका है। अगर कल की तारीख को आप देखने की कोशिश करेंगे यानी कि 9th of June, तो ये है बड़ा सा दिन, बिकॉज रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कतर का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स कल से शुरू होने जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट कतर 2026। वेल, दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में एक बार फिर से अगर आपकी किसी से मुलाकात होगी तो वो है फ्यूचर से। बिल्कुल, आने वाला दिन आज कैसा नजर आता है ये बात आपको जरूर पता चलेगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे, ग्रोथ होंगे, आने वाले दिनों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं जिन्हें आउटलाइन की गई है। मिडिल ईस्ट रीजन के बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जब एक छत के नीचे आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स साइन किए जाएंगे, तो आने वाला सफर और आने वाला दिन जो है डेफिनेटली हम सबके लिए काफ़ी सुनहरा होगा। तो जी, मैं तो इस जर्नी में पूरी तरह से निकल चुकी हूँ कि फ्यूचर से मुलाकात में प्रेजेंट में कर ही आऊंगी। एंड अगर आपको लगे कि आपका भी इंटरेस्ट काफी है तो मुझसे मिल ही लेना। 5000186 पे विल गेट कनेक्टेड देयर। लेट्स सी आपके बारे मिलते हैं वहां पर। मीनवाइल गुरु रंधावा की आवाज में फिल्म ब्लैकमेल से, ना मैं नहीं कर रही हूँ, फिल्म का नाम है, अगला गाना सुना दो। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's hot।
7: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
9: दोनों मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
11: 89.6
12: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: शिल्पा रॉय एंड सचेश टंडन की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज। भाई सुपर ट्रेंडिंग गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस सुपर ट्रेंडिंग बंदे की बात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु।
0: हेलो, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु वैल्यू। भले आपके साथ एक बार फिर से मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं तो आ चुकी हूँ, लेकिन एक ऐसे बच्चे की बात करते हैं, एक ऐसे बंदे की बात करते हैं जो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कम उम्र में भी बड़े बड़े काम जो है वो किस तरह से किए जाते हैं। भले आज जिसकी कहानी मैं आपके बीच शेयर करने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है जिसे पूरा का पूरा क्रिकेट वर्ल्ड आज की डेट में सर्च कर रहा है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात करी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी इसकी टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी। यार 15 साल की उम्र, जब हम अक्सर ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल असाइनमेंट्स और एग्जाम्स की टेंशन ले रहे होते हैं या अपने ब्रेकअप के पचड़े में पड़ रहे होते हैं, तब बिहार का यह लड़का इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज के दरवाजे पर खड़ा होता है। यार वैभव ने ना क्रिकेट की दुनिया में तब हलचल मचाया जब अंडर 19 क्रिकेट में रिकॉर्ड्स तोड़ने इसने शुरू किए। एंड उसके बाद आईपीएल की जर्नी शुरू हुई, जहां उसने ऐसे शॉट्स लगाए कि सेलेक्टर्स को उन्हें इग्नोर करना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजित अगरकर ने खुद कहा कि वैभव ने अपनी परफॉर्मेंस से सेलेक्टर्स को उन्हें सेलेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। फोर्स नहीं, मजबूर। और आज के डेट में हम सब के लिए सबसे फक्र की बात एंड बड़ी बात कहने की कोशिश करें तो, अगर इंडिया के सीनियर T20 स्क्वाड को आप देखने की कोशिश करेंगे, आयरलैंड एंड इंग्लैंड के टूर की हम बात करें, तो फाइनली ये बच्चा जो ये सिलेक्ट हो गया है, ये खबर जो है आज के डेट में दुनिया में पूरी तरह से फैल भी गई है। लेकिन सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का डेकेड्स ओल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए इंडिया मेन्स टीम के सबसे यंग कॉलअप बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम हासिल कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी कम उम्र में ये डेडिकेशन आया तो आया कहाँ से? क्या इसमें परवरिश का बहुत बड़ा हाथ है? शायद हाँ। क्या कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल हाँ। जो उसे वो माहौल दिया गया, क्या उसका बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल हाँ। क्या उसके दिमाग में वो जो बीज बोई गई, उसका बड़ा हाथ है? बिल्कुल हाँ। लेकिन इसके अलावा इस बच्चे ने खुद की जो समझ दिखाई, उसका शायद सबसे सबसे बड़ा हाथ है। वेल, हम ना अक्सर अपने बच्चों को औरों से कंपेयर करते हैं कि ये वो कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हैं जो उस बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचा सके जहां पे हम पहुंचाना चाहते हैं, या हमने क्या उस बच्चे को वो पूरा का पूरा माहौल और एनवायरनमेंट दिया है? अगर खोट कहीं हम में है ना, तो भैया कंपेरिजन पहले खुद को उन पेरेंट्स से करें जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। बाकी हर बच्चा अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख कर आता है। श्रुति रानी की आवाज़ में अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out.

स्वागत चैतन्या की खूबसूरती आवाज सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जितने पावर पैक तरीके से इन्होंने हमारी जिंदगी में एंट्री मारी है, जरा इनकी भी बात हो जाए।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
2: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
5: कट कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा, मैं दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
1: Mirchi, it's

किसी और सीजन का आना हमारी लाइफ में होता है, जरा उसकी बात हो जाए। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में खूबसूरती बिखेरने में आ ही चुकी हूँ, लेकिन अगर समर्स की बात करें तो माना कि इस चिलचिलाती हुई गर्मी में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, लेकिन हाँ सुकून तब मिलता है जब वो रंग बिरंगे सुनहरे आम यानी कि मैंगोज जो है ना ठीक हमारे सामने आते हैं। यार गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अगर किसी बात का वेट होता था तो दैट यूज्ड टू बी मैंगोज। अब आम के ना हमारे घर पे बहुत अलग अलग डिश बनते थे। एक चीज जो रोज बनाई ही जाती है, मैंडेट आज भी मैंने कतर में ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा है, सो दैट इज आम रस। यू नो आम को या तो फिर पानी में पूरी तरह से फेंट के या हल्का सा उसमें दूध डालकर फेंट के, मैंगो शेक नहीं, हम उसे आमरस कहना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसे लंच में खाना और उसके बगैर खाने को पूरा करना, भाई साहब ये बात जो है ना पूरी तरह से गलत है। मतलब आमरस के बिना खाना तो पूरा हो ही नहीं सकता। एंड यार मतलब गर्मियों का मौसम आए, कच्चे आम एंड घर पे आम का पन्ना ना बने, इससे बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट या हाइड्रेशन का कोई ड्रिंक जो है हो ही नहीं सकता। क्या आप अपने घर में आम पन्ना बनाते हैं आज के डेट में? ना कच्चे आम को उबाल कर उसे पानी में भिगो कर उसके रस को एक्सट्रैक्ट कर उसमें तड़का लगाना, मिंट डालना, भाई क्या गजब टेस्ट आता है। लिटरली माय माउथ इज वाटरिंग एट द मोमेंट स्पीकिंग। यार एंड आम का अचार घर पे ना बना, आम का वो मुरब्बा ना बना, आम का श्रीखंड ना बना। नाउ दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो मैंडेट तौर पे आम के सीजन पे हमारे घर पे बनाई जाती है। एंड कतर की लेकिन सबसे खास बात क्या है पता है? हमें ना यहाँ पे 12वें से 8 महीने तो कहीं ना कहीं के आम मिलते हैं और ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ये जो समर वाले आम आते हैं ना, जब इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इजिप्ट की बात करें और ढेर सारी जगह से जो मैंगोज आते हैं, इनका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो काफ़ी अलग है। आप मुझे एक बात बताना कि आपका सबसे फेवरेट मैंगो कौन सा है? ना मैंगो की इतनी सारी ग्लोबल वराइटीज़ है, वो 500 टाइप्स ऑफ मैंगोज आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। आपका सबसे वैरायटी कौन सा है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सुंदरी आम और साथ ही केसरी। केसरी जो कि गुजरात की यू नो मेन फसल मानी जाती है, सुंदरी जो है वो मुंबई में भी काफी होती है, गुजरात में भी होती है। आपको सबसे ज्यादा आम की कौन सी वैरायटी पसंद है? 5000 1896। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज़ अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु। अच्छा।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

0: जैस्मिन सांचलस की आवाज यानी अगला पावर पैक गाना एक बार फिर से पुराने दिनों की याद हमें पूरी तरह से दिलाते हुए नॉस्टैल्जिया में हमें डाइव इन कराते हुए आ गया। लेकिन मैं जो है किसी बात की याद आपको एक बार फिर से दिला दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूँ तो मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि कैसे अपनी पढ़ाई के अलावा अपने दोस्त यारों के अलावा अगर सबसे प्रेशियस कुछ हुआ करता था सो दैट इज़ टू बी हमारा गुल्लक। वो गुल्लक जिसमें हम एक एक दो दो रुपए जोड़ जोड़ कर ना जाने कितने पैसे इकट्ठा कर लिए करते थे। इनफैक्ट 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के जो मिलते थे ना वो भी उसमें डालते थे एंड पता ही नहीं चलता था कि साल में जब दिवाली के वक्त हम उस गुल्लक को खोलने की कोशिश करें या फोड़ने की कोशिश करें भाई नई से नई तकरीबन 400 से 500 रुपए निकला करते थे। एंड हम ना इतने एक्साइटेड होते थे कि हमें अगर पता चल जाए कि भैया हमारे पैसे थोड़े ज़्यादा हैं एंड जो सामने वाला उतना ही परेशान होता था कि मिलते तो सबको एक बराबर थे तेरे पास एक्स्ट्रा आए तो आए कहाँ से। एंड उसके बाद वो इल्ज़ाम लगाने का तौर तरीका शुरू, नहीं मम्मा इसने स्टिक डालकर मेरे गुल्लक से पैसे निकाली और मुझे पता है, मम्मा नहीं ये ज़्यादा खर्च करता था मैं ज़्यादा बचाती थी। एंड क्या दौर था यार, कितनी मासूमियत का दौर उस समय उस ज़माने में। वो 300-400 रुपए हमारे लिए कितने वैल्यूएबल थे है ना। वैसे अगर आज के वक्त को भी देखने की कोशिश करूँ तो जब एक्सचेंज रेट थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है थोड़ा ज़्यादा होता है तो खुशी जो है ना वो गुल्लक वाली ही हमें मिलती है। क्या आपने रियलाइज किया है? जरा देखें आज का पैसा क्या बोलता है। वेल अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.13, पाकिस्तानी रुपीज 76.76, बांग्लादेशी टाका 33.70, नेपाली रुपीज 41.78 एंड साथ ही श्रीलंकन रुपीज 92.14। तो बस घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट। गुल्लक से याद आया, सीजन 5 देखा क्या? कुछ देर में बातें करते हैं। एंजॉय।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उसे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: लेती,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: जब से झनकार
1: खूबसूरत सी आवाज़ में, तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन उस खूबसूरत सी सीरीज की याद एक बार फिर से आपको दिला दूं।

अब एक बात बताओ, कोई मिश्रा जी को भूले तो कैसे ही भूले एंड क्यों ही भूले। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मिठी मिठी एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार कभी नोटिस किया है, हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, हमारे पास शायद सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है और वो है एक दूसरे का साथ। एंड ये बात जो है ना, बहुत खूबसूरत तरह से अगर किसी स्टोरी में डिपिक्ट की गई तो एक ऐसा सीरीज या कहना चाहिए एक ऐसी स्टोरी जिससे हर एक मिडिल क्लास फैमिली ने ज़रूर कनेक्ट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट गुल्लक। गुल्लक अगर इसके अभी तक सारे सीजन्स आप देखते हैं तो आप समझ सकते हैं यार कितनी रिलेटेबल है इसकी स्टोरी। यार वो महीने के एंड में बजट का टाइट होना, घर में छोटी छोटी सी नोकझोंक होना, सपने कभी थोड़े पोस्टपोन होना, लेकिन फिर भी उसी घर में सबसे ज़्यादा हंसी का होना, सबसे ज़्यादा प्यार का होना और सबसे ज़्यादा खूबसूरत यादों का भी होना। इसीलिए शायद गुल्लक जो है सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है भाई, इट फील्स लाइक आवर ओन स्टोरी। एंड मिश्रा फैमिली के कैरेक्टर्स हमें किसी ना किसी अपने की याद जो है ना वो ज़रूर दिलाते हैं, फिर चाहे हम वो पापा की साइलेंट सेक्रीफाइसेस की बात करें, मम्मी की एंडलेस केयर की बात करें, सिबलिंग्स के बीच उस नोकझोंक की बात करें या अंदर में छुपे हुए उस प्यार की बात करें। यार मतलब हर एक एपिसोड कुछ ऐसा लगता है भाई ये तो हमारे घर की कहानी है। इसीलिए तो कहते हैं कि लाइफ कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, ऐसी सीरीज जब हमारी जिंदगी में आती है ना तो हमें याद दिलाती है कि खुशियां हमेशा एक्सपेंसिव चीजों में नहीं होती बल्कि उन लोगों में होती है जो हर सिचुएशन में हर वक्त आपके साथ जरूर खड़े होते हैं। एंड फाइनली इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मुझे पता चल चुका है गुल्लक का सीजन 5 रिलीज हो गया है, अनाउंस हो चुका है, तो एक बार फिर से भैया अच्छा खासा मोमेंट घर वालों के साथ बिताने का पल जो है वो आ ही गया है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गुल्लक सीरीज क्या आप भी उसी तरह से कनेक्ट करते हैं जैसे मैं करती हूँ? मुझे आवाज जरूर बताना। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल ऋतु सिंह की आवाज एंड हवाओं से जरा बातचीत हो जाए। एंजॉय।

0: Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
1: उससे भी ज्यादा।
0: लॉटरी लग गई?
1: उससे भी बड़ा।
0: तो फिर बताओ।
1: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
2: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।

0: मिश्र समय नेहा कक्कर की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। भाई साहब अपने दौर का अपने जमाने का ये सुपर ट्रेंडिंग गाना हुआ करता था।
1: मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु।
0: Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Aan Show with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने जो है मैं आ ही चुकी हूँ। एंड इसके अलावा कुछ गानों की बात करूँ जिनसे हम इंस्टेंटली अपने दौर अपने जमाने से रिलेट करते हैं, तो भाई उसमें से ये एक गाना जरूर है। देखो वो बात तो अलग है कि हर दौर हर जमाना हर पल हर दिन जो है वो पूरी तरह से हमारा है, लेकिन हाँ यार जो हमारे स्कूल कॉलेज टाइम का जो दौर था ना वो जिस तरह से अपना था, मुझे शायद ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई और फेज हो जो इतना ज़्यादा अपना लगे। तो उसमें हिमेश रेशमिया की आवाज़, वो माइक्रोफोन को ऊपर करके गाने की वो एक्टिंग, न जाने कितने लोगों ने इसे इमिटेट करने की कोशिश की। उस जमाने में रील्स का ये ट्रेंड नहीं था, जरा सोचो अगर होता तो रील की यू नो बाहर के अलावा उसकी बाढ़ इस गाने के जरिए कैसे आती है बाढ़ जो है हमें ज़रूर पता चलती। चलिए आज ना आपसे जाने से पहले एक सवाल पूछती हूँ, कोई ऐसा ट्रैक है या कोई ऐसा गाना जिससे आप बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं? अगर आपकी कॉलेज या स्कूल टाइम को याद करने की कोशिश करें तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में वो कौन सा गाना आता है जो किसी फीलिंग इमोशन को सबसे ज्यादा इवोक करने की कोशिश करता है? डू शेयर दैट विद मी 5000 1896 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अभी के लिए अलविदा, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। आपने एक ही काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हु दैट?
4: जस्सी।
5: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
4: जस्सी हु हैज कम आंटी जी।
5: खट खट, हु दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: नानी और नानी का घर हमेशा एक जैसे नहीं रहते।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये बात हमने कभी बचपन में सोची नहीं ना कि जो हम इतनी सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। नानी का घर, नानी का घर हमेशा नहीं रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ना नानी होती है और ना वो घर घर जैसा लगता है, फिर वहां जाने का मन भी नहीं करता है। दुनिया कितनी बदल जाती है ना यार। और आप बोलोगे सारा ऑल ऑफ अ सडन ये क्या इतनी इमोशनल बातें कर रही हो तुम। एक्चुअली हुआ क्या ना कि कल मैं कैफेटेरिया में बैठी हुई थी एंड मेरे बाजू वाली जो टेबल थी वहां पर एक नानी और नवासी की जोड़ी आके बैठी और उनका कॉन्वर्सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। एंड सिंस वो लोग अपने ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ऑफकोर्स वो बातें मुझे भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो तो मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठे हुए थे ना। तभी नानी जो थी वो अपनी नवासी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि भाई तुम कुछ लेने की बात करो, किसी चीज पर राजी हो तो मैं तुम्हें दिलाऊं भी। तुम हो कि किसी चीज के लिए हाँ ही नहीं बोलती हो। और जो नवासी थी ना वो बिल्कुल चिल सीन जेंजी नवासी, शी वाज लाइक नानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एम देर आई रियलाइज कि हमारी जनरेशन और आज की जनरेशन में कितना फर्क हो गया यार। मतलब हमें अगर कुछ दिया जाता था वो भी बिना पूछे तो हम नाना करते हुए हाँ कर लिया करते थे यार, क्योंकि उस ना में हाँ ही होती थी। एंड आज आई डोंट रिपेंट दैट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो सारे मौके हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये हमेशा नहीं रहती। हमें तब ऑफकोर्स नहीं पता था कि नानी और नानी का घर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आज जो हमने लम्हे जी लिए अपनी नानी के घर में, उन्हें जीने के बाद तो लगता है कि जो किया अच्छा किया। कितनी सारी यादें हैं नानी के घर की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए नानी के घर की यादों को ताजा किया जाए। तो चलो जी, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी 90s के गियर में डाल चुकी है और मैं आपसे कह रही हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो
1: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
0: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
1: एक सेकंड रुकिए। छोटू, नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
0: हेलो,
1: एक सेकंड मैडम, होल्ड करिए मैडम। डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
0: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
1: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
0: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
1: है मोबाइल पे
0: और क्या?
1: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
0: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
1: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
0: आपको बताना चाहिए था ना
1: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
0: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब?
1: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
0: आपका दिमाग खराब?
1: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए।
0: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
1: नवेद लिखिए, नवेद
0: आ रही है।
2: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज अगर मुझे कोई चॉइस दे और मेरे पास ऑप्शन हो कि यार सारा तुम क्या चूज करोगी, कश्मीर या स्विट्जरलैंड की वादियों में खो जाना, वहां पर ट्रैवल करना, या फिर अगर तुम्हें मौका दिया जाए कि तुम बचपन के टाइम में नानी का घर विजिट कर पाओ, तो तुम कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगी? एंड ऑफ कोर्स आप मेरा आंसर जानते हो।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और नानी का घर वो घर हुआ करता था जो कि हमारे घरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब वहां पर वो सब कुछ था जो हमारे घर में नहीं था, एंड दैट इज नानी का प्यार, ननिहाल का दुलार, जो आज हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बड़े होने का मुझे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही लगता है कि वो लाड प्यार दुलार जो है वो कहीं चला गया। नाउ हमने अपनी सीट्स बदल ली हैं और हम वो जगह पर आ गए हैं जहां पर हम ननिहाल का प्यार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय हमारे दिन कहाँ चले गए यार। लेकिन नानी के घर में मुझे वो टाइम याद है जब खाना खाना नेवर यूज टू बी अ टफ जॉब, ना हमारे लिए और ना ही हमारे पेरेंट्स के लिए। हमें खाना खिलाना बहुत बड़ी जॉब हुआ करती थी यार। मतलब आज के टाइम पे व्हेन आई सी माय नीसेस एंड नेफ्यूज, उनको खाना खिलाना कितना बड़ा काम हो जाता है। एक दो घंटा तो लग ही जाता है यार, वो भी टीवी और मोबाइल के जरिए उनको खाना खिलाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन लोगों ने खाना खाना सीखा है। हमारे साथ कभी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ करता था यार। हम तो सारे के सारे कजन एक पंगत में बैठ जाया करते थे, दस्तरखान लगता था, उसके ऊपर खाना लगता था और सारे के सारे साथ में बैठ के एक दूसरे को देखकर खा लिया करते थे। कभी नहीं सोचते थे और क्वेश्चन करते थे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। जो सब खा रहे वही हम खा रहे होते थे। इनफैक्ट जो खा रहे होते थे उसमें हम कॉम्पिटिशन भी लगा रहे होते थे कि कौन सबसे ज्यादा रोटियां खा पाता है, कौन सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खा पाता है, आज देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा भुज्जे खाता है कड़ी में। और कभी कभी तो हम इस चीज की भी कंपटीशन लगा लिया करते थे कि लेट्स सी कौन कितने ज्यादा ग्लास पानी पी लेता है। इसी कंपटीशन को जीत जीत कर या फिर उसमें कभी हार हार के हम पल बढ़ गए। कभी खाना हमारे लिए टफ जॉब हुआ ही नहीं, एंड आई थिंक दैट इज वन बिग रीजन कि आई एम अ बिग फूडी। नाउ आई लाइक एवरीथिंग, कुछ भी खिला दो मैं शौक से खा लूंगी, उसके अंदर स्वाद और प्यार भरा हुआ होना चाहिए। नानी के घर की कुछ बातें अलग थी और वही बात आज मिडडे मोहब्बत पर हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमारे घरों में ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम इस तरीके के नाम दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूम्स को, लेकिन नानी के घर का आर्किटेक्चर वॉज वेरी डिफरेंट।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज इस पिटारे में से नानी का घर निकल के आया है, जो कि हम सबके दिल के अजीज चीज है। एंड नानी के घर में ना कमरों के नाम हुआ करते थे, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, नहीं, इतने पॉश नेम नहीं हुआ करते थे। नानी के घर में कमरों के नाम हुआ करते थे, जहाँ टीवी रखा है वो टीवी वाला कमरा, जहाँ फ्रिज रखा है वो फ्रिज वाला कमरा, जहाँ अनाज रखा है वो गेहूं वाला कमरा, और जहाँ बिस्तर रखे हैं वो बिस्तर वाला कमरा। इन सभी कमरों में खेल कूद कर हम पले बड़े हैं, और बड़े होने के बाद जब नानी के घर में अब जाते हैं ना, तो आज भी हम उन कमरों को उसी नाम से बुलाते हैं, भले ही आज उनके नाम अलग हो गए हो। ये चिंटू का कमरा है, वो बिट्टू का कमरा है, या ये ड्राइंग रूम है और ये लिविंग रूम है। ना जी, हमारे लिए तो आज भी वो टीवी वाला, फ्रिज वाला, अनाज वाला कमरा है। आज उसका नाम बदलने का हमारा दिल बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज ये सिर्फ नाम नहीं है भाई, नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं बचपन की। जो नानी तो चली गई, लेकिन उनके घर से ये यादें इन नामों के साथ आज भी जुड़ी हुई है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: ओ वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bol Dal, Bollywood Bol Dal,
1: only on Mirchi, it's hot.
4: Cut cut.
5: Who that?
4: Akbar.
5: Akbar who?
4: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
5: Cut cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक गेम हुआ करता था डार्क रूम, और हम वो अक्सर नानी के घर में बिस्तर वाले कमरे में खेला करते थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि नानी के घर में हर एक कमरे की अपनी एक आइडेंटिटी और एक पर्सनालिटी हुआ करती थी। उसमें से सबसे बड़ी पर्सनालिटी मुझे ना बिस्तर वाले कमरे की लगती थी। यार इतना धमाल किया करते थे ना हम बिस्तर वाले कमरे में, क्योंकि उस कमरे में जितने बिस्तर रखे जाते थे ना, वो बिस्तरों की महक से और उस वार्म्थ से बड़ा ही अलग फील दिया करता था। और सबसे ज्यादा मजा हमें उस कमरे में खेलने में आया करता था। कभी तो बस गर्मी के अंदर बिना पंखे के गद्दों की पूरी लाइन के ऊपर लेट जाया करते थे कि यार हम कितनी ऊंचाई पर लेटे हुए, क्या अलग ही मजा आ रहा है कि यहाँ से सीलिंग टच कर पा रहे हैं। और कभी हम खेला करते थे डार्क रूम करके एक गेम, बिकॉज बिस्तर वाला कमरा ना हमेशा अंधेरे में रहा करता था, और वहां पर गद्दों के और रजाइयों के बीच में छुपने में बड़ा मजा आता था। आज जब मैं सोचती हूँ ना, तो लगता है यार हमारे तो बेड बॉक्स में जितनी थोड़ी बहुत रजाइयां है सो है, नानी के घर में एक बिस्तर वाला कमरा हुआ करता था, जो कि ये बात साफ जाहिर करता है कि किस तरीके से नानी के घर में मेहमानों की ना कमी होती थी और ना ही कभी बिस्तरों की। ऐसे मजे मेहमानों को आज के जमाने में किसी के घर में नहीं आते होंगे जितना कि नानी के घर में आया करते थे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया
1: है
2: फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है वो
2: आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आ गए, वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं वो पहले आ रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल बाल्टियां सिर्फ नहाने के काम में या पोछा लगाने के काम में आती हैं। भाई एक जमाने में तो इन बाल्टियों के अंदर आम और खरबूजे रखे जाते थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर ये जो 90s का पिटारा खुला है तो इसके अंदर नानी के घर के ठाट निकल के आ रहे हैं। और ये ठाट वही थे जब बाल्टियों के अंदर भर भर के आम रखे जाते थे पानी डाल के, ताकि ये जल्द से जल्द जो है ठंडे हो जाएं और हम इन्हें खा पाए। कुछ बाल्टियां ऐसी भी होती थी जिनमें खरबूजे हुआ करते थे। आज जब मैं सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ये कितनी अनरियल सी बात है ना। आजकल तो इतनी तादाद में लोग इकट्ठे ही नहीं होते कि इतने आम और इतने खरबूजे कोई लाए बाजार या मंडी से। लेकिन मुझे याद है कि कैसे मामू जान बाजार से ना पेटी के पेटी उठा के लेकर आते थे आम के, खरबूजों के, और बाल्टियों में भर भर के इन्हें रखा जाता था, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो इतनी जगह ही नहीं होती थी ना यार। फ्रिज भी छोटे होते, रखे जाते थे पानी डाल के, ताकि ये जल्द से जल्द जो है ठंडे हो जाएं और हम इन्हें खा पाए। कुछ बाल्टियां ऐसी भी होती थी जिनमें खरबूजे हुआ करते थे। आज जब मैं सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ये कितनी अनरियल सी बात है ना। आजकल तो इतनी तादाद में लोग इकट्ठे ही नहीं होते कि इतने आम और इतने खरबूजे कोई लाए बाजार या मंडी से। लेकिन मुझे याद है कि कैसे मामू जान बाजार से ना पेटी के पेटी उठा के लेकर आते थे आम के, खरबूजों के, और

करती थी। खरबूजे को ठंडा करने के लिए बर्फ डाल दिया करते थे ताकि खरबूजा जो है वो अच्छा ठंडा हो जाए और फिर उसे काटा जाए। और आम को बाल्टी के अंदर पानी के अंदर भर भर के रख दिया जाता था और हमारी हमेशा राल टपकती रहती थी कि कब कब ये ठंडे हो और कब हम इन्हें खाएं। और एक और बड़ा शौक हुआ करता था हमें गर्मियों की छुट्टियों में कि वो खरबूजे के बीज जो होते थे उन्हें हम सुखा दिया करते थे, फिर धोया करते थे और फिर रखा करते थे। और फिर एक काम और किया करते थे, जब वो धुल के साफ हो जाया करते थे तो अपनी जेबों में भर भर के उन खरबूजों के बीज को हमेशा रखा करते थे और निकाल निकाल के तोड़ तोड़ के खा लिया करते थे इतनी मेहनत करके। आज इतनी मेहनत हमसे कतई नहीं होगी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों की बात ही कुछ और थी यार। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने में मजा जो आता था, आज तो इंस्टाग्राम पर ही दिल भर जाता है। पता ही नहीं लगा यार कब हमने नानी के घर से अपनी जिंदगियों में ये जंप मारा कि आज हम नानी के घर की सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज के घरों के आर्किटेक्चर में अगर मैं कोई एक चीज मिस करती हूँ ना, तो वो है एक आंगन।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। यार, गार्डन्स तो लोग रख लेते हैं, बालकनीज भी लोग रख लेते हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए, घरों के डिजाइन्स अलग हो गए, और आंगन कहीं गायब ही हो गया यार। मतलब वो एक आंगन जो घर के बीच में हुआ करता था हमारी नानी के घर में, वो कितना इस्तेमाल होता था यार। ऊपर से नीचे हम बातें किया करते थे, टोकरी लटका लटका के सामान ऊपर खींचा करते थे। ये वही आंगन था जहां पर हमने लंगड़ी टांग खेली है, जहां पर हमने सात समंदर खेला है। अभी भी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आंगन में वो डिजाइन पैटर्न बने हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इमेजिन कर पा रही हूँ मैं उन डिजाइन पैटर्न्स पर कूदते हुए, पेबल्स खिसकाते हुए हम कैसे 1, 2 का 7 कर दिया करते थे। ये वही आंगन था जो दिन की धूप में जब छतें बहुत गर्म हुआ करती थी तो आंगन हमें संभाल लिया करता था कि अच्छा चलो छत पे गर्मी है तो क्या हुआ, मैं तो डायरेक्ट धूप में नहीं हूँ, मेरा इस्तेमाल कर लो। उसी आंगन में पकड़म पकड़ाई, उसी आंगन में छुपन छुपाई, उसी आंगन में छच्चा छन्नी, उस घर मंगनी, अगर आपने इस गेम के बारे में सुना है तो। हर गेम खेला है हमने। ये आंगन आंगन कम और हमारा कजन ज्यादा लगता था, इससे वाकई में बहुत गहरा रिश्ता था। तभी तो इस आंगन को आज भी घरों की बनावट में ढूंढते फिरते, लेकिन वो अब कहीं नहीं मिलते। और जहां कहीं मिल जाते ना, तो वहां सीधे एक बात निकल के आती है जुबान पर, अरे ये तो बिल्कुल नानी के घर जैसा है ना। You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Agarkar.
6: Agarkar who?
5: Agar karna hai to kar, warna chhod de.
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Trinks, trinks. ये आवाज आपको किसी चीज की याद दिलाती है?
2: ये नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Zara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, ये आवाज नहीं, ये भाषा थी। जब हम थिएटर में मूवी देखने जाया करते थे और 90s में तो मल्टीप्लेक्सेस नहीं हुआ करते थे, थिएटर्स ही हुआ करते थे, तो इंटरवेल में समोसे वाले भैया और कोल्ड ड्रिंक वाले भैया आया करते थे, क्रेट में कोल्ड ड्रिंक रखकर, और कोल्ड ड्रिंक की जो कांच की बोतलें होती थी उसे ओपनर से बजाते हुए ट्रिंक्स ट्रिंक्स ऐसा बोलते हुए वो आते थे। मुझे तो बहुत टाइम लग गया यार ये समझने में कि ये बोल कह रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिंक्स नहीं ड्रिंक्स हुआ करती थी, और ड्रिंक्स बोले तो ठंडा, और ठंडा बोले तो नहीं नहीं नहीं ठंडा बोले तो यार मुझे तो बचपन में बहुत सारे ठंडे पसंद हुआ करते थे। लेकिन हाँ, इस आवाज में एक्साइटमेंट जरूर था कि बस अब हो गया इंटरवेल, अब मिलेंगे समोसे खाने को और कोल्ड ड्रिंक पीने को, क्योंकि हमारे लिए ये चीजें तो बहुत खास हुआ करती थी ना। हर रोज थोड़ी ना हमें कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे मिला करते थे यार, इतना रिस्ट्रिक्शन रहता था हमारी जिंदगियों में। मगर वो क्या है ना कि इन रिस्ट्रिक्शन से हर चीज की प्यास बढ़ जाती है। अब वो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की प्यास ही क्यों ना हो, वो भी बढ़ जाया करती थी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vie va la burga. Milci, burga.
1: हेलो।
2: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की। तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने। उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: हाउ इज द जोश?
7: हाय सर, हाउ इज द जोश?
6: हाय सर।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। बैक टू बैक कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुछ आवाजें ऐसी हैं जो आज शायद हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन अगर उन्हें याद किया जाए ना तो कानों में खनक सी उठती है। एक और एक ऐसी आवाज थी जो कि ठंडक का एहसास थी, सुनो जरा। गैस कर पाए कि ये किस चीज की आवाज है?
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये जो भौपू का हॉर्न था ये आपको शोर की तरह सुनाई दे रहा होगा आज, लेकिन ये 90s में हमारे लिए हुआ करता था म्यूजिक। बिकॉज ये भौपू का बजना मतलब गली में आइसक्रीम वाले भैया आए भाई अपनी पूरी साइकिल लेकर, कार्ट लेकर, और हम सारे बच्चे भागते हुए नीचे जाते थे कि आइसक्रीम वाले भैया आ गए, आइसक्रीम वाले भैया आ गए। एक सर्टेन टाइम हुआ करता था उनके आने का, और उसी टाइम के आसपास हम इंतजार करते थे कि ये आवाज अब सुनाई दे, ये आवाज तब सुनाई दे। और जैसे ही ये आवाज सुनाई देती थी, हाथ में अपने 2 रुपए लिए और नीचे की तरफ जो स्पीड से सारे बच्चे भागा करते थे, और फिर भीड़ लग जाती थी उनकी कार्ट के आगे पीछे। आइसक्रीम वाले भैया की साइकिल वाली गाड़ी का भोपू हो या फिर कुल्फी वाले भैया की घंटी, ये दोनों ही आवाजें ना ठंडक का एहसास थी। गर्मियों की छुट्टियों में ना ये आवाजें सिर्फ आवाज नहीं, दिल को तरावट देता हुआ एहसास थी। याद है आपको गर्मियों की छुट्टियों की वो आइसक्रीम और कुल्फिया? You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सेटिंग हुई क्या?
1: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है यार।

0: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
3: खूब मिलेगा, मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लता जी और उदित नारायण की आवाज में जतिन ललित का कंपोज किया गया और आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गाना फ्रॉम द फिल्म मोहब्बतें इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हमको हमी से चुरा लो, ओए होए, ये गाना बड़ा सूदिंग लगता है यार मुझे। इसका म्यूजिक भी इट्स सो कामिंग कि जब भी इस गाने को मैं सुनती हूँ ना, पता नहीं क्यों, कहीं पर भी हो, मतलब यू नो, जोश भरा माहौल हो, टेंशन भरा माहौल हो, बस इस गाने को सुन लो, आपका जो दिमाग है वो अपने आप उसके केमिकल्स जो है उसका लोचा खत्म हो जाएगा, वो काम डाउन हो जाएगा। बेबी काम डाउन गाने की जरूरत नहीं है, इस गाने को सुन लेना ही वर्क्स लाइक थेरेपी। और इस गाने को पिक्चराइजेशन भी बड़ा प्यारा लगता है यार, चार लव स्टोरीज साइमल्टेनियसली चलती हुई इस गाने के अंदर नजर आ रही होती है। लेकिन इस गाने के ये जो बोल हैं, आनंद बख्शी साहब ने भी क्या बोल लिखे हैं वाकई में, इतनी सारी चीजें हैं ना इस गाने के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आती हैं। लेकिन मैं हाईलाइट करती हूँ इस बात पर जहाँ उन्होंने इतनी खूबसूरत अदा बताई है कि हम जुल्फें तो बिखरा दें दिन में रात ना हो जाए, हम आंचल तो लहरा दें पर बरसात ना हो जाए, और फिर प्यार की हदों को पार करती हुई ये लाइनें आती हैं कि होने दो बरसातें, करनी है कुछ बातें, पास आओ गले से लगा लो। इस गाने में कूट कूट के रोमांस भरा हुआ है, मतलब जो लड़की की लाइंस हैं वो भी इतनी रोमांटिक है और जो बंदे की लाइंस हैं वो भी इतनी रोमांटिक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रोमांटिक और रोमांटिक दोनों ही तरफ से चल रहा है ना मामला, कहीं पर भी ये क्लैश नहीं है कि लड़का जो है वो ज्यादा रोमांस की बातें कर रहा है और लड़की जो है वो हिचकिचा रही है, अटपटा रही है, छटपटा रही है और बात नहीं करना चाह रही है। नहीं यार, आग दोनों तरफ बराबर की लगी है वाला गाना है ये। और मेरी बात खत्म करने से पहले ना ये दो लाइंस और मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी गाने की, कि लोग तो वैसे कहते हैं ये कर जाते हैं, जैसे तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे। ऐसे कितने लोग मिलते हैं यार लाइफ में जो ऐसी बातें करते नहीं कर जाते हैं। चलो जी, जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
2: ऑफ कोर्स, कस्तू मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे, और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे, और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
1: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
4: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
3: खटखट, हु दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6 मिर्ची 1 पर अब हम क्या ही स्वागत करें, गाने नहीं आपका स्वागत कर दिया। लेकिन बातों का स्वागत हम करेंगे, और स्वागत तो हमें करना है सबसे गर्म दिनों का। यस, हॉटेस्ट डेज टू बिगिन इन कतर नाउ, क्योंकि कतर का वो स्टार आ गया है जो गर्मी का चरम लेके आने वाला है। शाम के 4:05 के करीब दौड़ती घड़ी की सुई।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ जी, कह यही रहे हैं कि कतर का सबसे जबरदस्त वाला हॉट स्टार जो है वो सीजन ऑन हो गया है, इसे प्लेदिस बोलते हैं। जून 7 की शुरुआत से ही ये माहौल बन रहा है, अब स्कॉर्चिंग समर हीट विल हिट अस, एंड ऐसे में कतर मेट्रोल डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों के लिए हमें तैयार रहने को कहा है। अगले कुछ दिन वो गर्मी, वो हीट वेव हमारे और आपके पास से गुजरेगी, गाड़ियों को बना देगी खुलता तंदूर, एंड हमें और आपको पानी पीते रहना है हजूर। फिलहाल तो बस वाला गौरव आ गया है बातों की दुकान लेकर, ढेर सारी बातें बताएंगे, एंड वर्ल्ड कप फुटबॉल में कौन सा नया नियम आया है ये भी आपके कानों में पहुंचाएंगे। वर्कर कॉन्ट्रैक्टर्स को हीट के टाइम पे क्या करना है ये सब कुछ यहीं पता लगेगा, बस कान लगा के अब मिर्ची में वॉल्यूम बढ़ाए लो भैया। आगे मस्मोल और गौरव लेके शाम शानदार बनाएंगे, आपकी शाम को शानदार, बस साथ दीजिए मेरा यार मिर्ची। इट्स हॉट

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: ओह माय गॉड,
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेज दूँ?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे husband से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछी पुछी कुछी पुछी. ओके स्वीटहार्ट बाय. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम हमारे यहाँ.
2: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ.
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते.
1: क्या खाते मैम?
2: मुर्गा.
1: मैम वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम.
2: रेडियो मिर्ची.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ. आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813.
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
7: दोनों मिलेगा.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन. 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot.
8: Sheesh.

भैया अब बिना रेड कार्ड के भी 10 खिलाड़ी हो सकते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के टीम में। 89.6 पर जीवन भर मस्त मौला गौरव आपके साथ एंड 2026 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां जोर शोर पर और नए रूल्स इस वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें तो हर साल वर्ल्ड कप में कुछ नया हुआ है। 2014 की अगर बात करें तो गोल लाइन टेक्नोलॉजी इसी वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस की गई थी जो ब्राजील में हुआ। फिर 2022 में कतर में ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी भी आई थी जब प्लेयर ऑफसाइड होते थे और ऑटोमेटिकली पता लग जाता था और एम्पायर ऑफसाइड का साइड लाइन में जो रेफरी होते हैं वो फ्लैग उठा देते थे। अब ऐसा ही एक बड़ा चेंज आने जा रहा है, 10 सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रूल, यानी कि अगर एक खिलाड़ी को मैदान छोड़कर जाना है और दूसरे प्लेयर को अंदर आना है 10 सेकेंड्स के अंदर ये करना होगा। अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ तो 10 मैन टेम्परली आपकी टीम के हिस्सा हो जाएंगे और एक प्लेयर रेड कार्ड की तरफ बिना खेले बाहर हो जाएगा। इसके अलावा 5 सेकेंड काउंटडाउन किया गया है थ्रो इन एंड गोल किक को, यानी कि समय बिल्कुल वेस्ट ना हो। इंजरी ट्रीटमेंट चेंजेस भी किए गए हैं, 60 सेकेंड के अंदर या तो आप फील्ड में रहिए या बाहर चले जाइए, इसको एकदम क्लियर कर दिया गया। एंड गोल कीपर 8 सेकेंड से ज्यादा बॉल होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि फुटबॉल का गेम यूं तो तेज गेम था ही, अब इसे सुपर फास्ट बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए एंड टाइम शॉर्ट करके भी। बिल्कुल मिलाकर इतना कहना चाहता जहां दूसरे गेम अपने आप को छोटा किए जा रहे हैं वहीं फुटबॉल इस गेम को एनर्जी से भरपूर बनाने के लिए टाइम को छोटा कर रहा है ताकि प्लेयर्स पूरे टाइम खेल में दिमाग लगाएं, कोई ड्रामा कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। आई एम वेरी श्योर भाई, ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है नेमार भैया अब क्या नौटंकी कर पाओगे। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मौसम,
1: कसम बता रहे इस मौसम में बरसात की बात से ही राहत मिल जाती है। जुबिन नौटियाल के पास में ये गाना, लेकिन बरसात नहीं, मेरी बात को सुन। अगर पैसे जुटा रहे हो तो नॉन कतरी प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए आप 10 एरिया को चूज कर सकते हो।
2: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
1: ये सब आपको बता दें कि अब आप कतर में अपनी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। उन एरियाज को डेजिग्नेट किया गया है। अगर आप सिटीजन नहीं हो लेकिन आप कतर में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10 डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, जिसमें वेस्ट बे का लेक्ताफिया एरिया जोन 66, पर्ल आइलैंड जोन 66, अलखोल रिसोर्ट जोन 74, दाफना, ओनाइजा, लुसेल, अलखरेज एंड जबाल थवालिब के अलावा सिमाइस्मा रिसोर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट भी है। ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड रियल स्टेट से कतर में अपनी एक प्रॉपर्टी बना सकते हो। सो भाई नॉन कतरीज, हमारे लिए ये एक मौका है कतर के बढ़ते इकोनॉमी के साथ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने का। और हमारे जैसे लोग तो सपने में भी घर खरीद लो, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो राइट टाइम टू इन्वेस्ट दोस्तों। इन 10 डेजिग्नेटेड एरियाज में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपके पास मौका है आने वाले टाइम में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में अपना एक प्रॉपर्टी ओन करने का मौका। इसे मत गवाओ दोस्त। और अगर ज्यादा दोस्ती की निभाना चाहते हो, एक छोटा एरिया हमको भी है जी। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ।

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर।

0: Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: Restaurant partner Chaska Restaurant. Chinese, Mumbai ho ya North Indian ka craze. Budget mein chahiye tasty days. To chaliye Chaska Restaurant. Jo hai Esdano Esses mein. Swaad bhi zabardast aur price bhi mast.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with Hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. Har pal ko banaye khas Sky Jewelry ke saath. Elegant designs, dazzling collections. Aur har budget ke liye perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry. Design for generations.
5: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
6: उससे भी ज्यादा.
5: लॉटरी लग गई?
6: उससे भी बड़ा.
5: तो फिर बताओ.
6: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है. ग्रोसरीज से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम.
0: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच. पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ.
7: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
8: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: भाई लाल घगरा तो ठीक है, लेकिन याद रखिए हमारे और आपकी गाड़ी एकदम लाल गरम हो रही है, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी गाड़ी के टायर जरूर चेक करते रहिए इस मौसम में ना। कभी कभी हीट की वजह से, जो सड़क पे हीट है ना, उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा एयर आ जाती है, तो अपने एयर प्रेशर को एकदम सही तरीके से नाप तोल करते रहिए। इन सब के बीच आ गई है बारी बताने की।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हम कतर के सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर को देखेंगे, क्योंकि स्कॉर्चिंग समर की तैयारी कर लीजिए। एनुअल राइज ऑफ टेम्परेचर इज हियर। प्लियाड्स बोल के जून 7 से एक नया स्टार आता है जो कि 13 दिनों तक लास्ट करेगा, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे कतर में हीट जो है, जो गर्मी है, वो काफी ज्यादा होगी। तो घबराना नहीं है दोस्तों, इस दौरान लू के थपेड़े भी चलेंगे। अल बवारी जिसे कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट विंड, वो भी साथ में आ रही है। टेम्परेचर कैन रेन बिटवीन, यस, मिनिमम अराउंड 26, मैक्सिमम अराउंड 43-44। घबराना नहीं है, पानी पीते रहना है और पानी पी पी कर गर्मी को कोसते रहना है, ताकि जल्दी से गर्मी खत्म हो जाए और फिर से अच्छे वाले मौसम आ जाए। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट। और ये था आज का वेदर अपडेट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813। बुलावे

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
3: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
2: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
5: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद

0: पावर्ड बाय आईपे, बेस्ट रेट, नो स्ट्रेस, आईपे वॉलेट का भरोसा। डाउनलोड कीजिए आज ही आईपे, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस का रेस्टोरेंट। चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज, तो चलिए चस का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry, design for generation.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये ना मिर्ची से एक तरह से इंस्पायर्ड गाना है। हम बोलते मिर्ची और ये बोलते माशुका, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो आई है गुरु हमसे। शाम के 5:05
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: वेल, इन सब के बीच बस फॉर गौरव इस घंटे खेलता है वो जिसे कहते हैं और पहचान कौन में एक आवाज आपके कानों में, आपको बतानी है ये किसकी आवाज है।
3: एनीवे तो वो लोग अभिजात भाई और राजू हिरानी देखने को आते और उनको किसी ने बोला ये प्ले है, हर शो में आके बैठते थे और हर शो में हमारा कुछ ना कुछ नया नया एंगल आता था।
1: हर शो में कुछ ना कुछ नया एंगल आता था और इस आवाज का भी एंगल आप पहचान रहे हैं। आपको पता है ये आवाज है किसकी? 5000 1896 पर ये आवाज किसकी है आपको बताना है। एंड जितनी जल्दी हो सके वॉइस नोट पे अपना जवाब भेजेगा। हाय गौरव, मैं ये बोल रहा हूँ, वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लो एंड व्हाट्सएप कर दो 5000 1896 पर। एक बार फिर ध्यान से सुनिए।
3: एनीवे तो वो लोग अभिजात भाई और राजू हिरानी देखने को आते और उनको किसी ने बोला ये प्ले है, हर शो में आके बैठते थे और हर शो में हमारा कुछ ना कुछ नया नया एंगल आता था।
1: हाय भैया, हर शो में कुछ ना कुछ नया एंगल आता था और इधर तो लोगों ने बवाल शुरू कर दिया भैया, जवाब आने शुरू हो गए 5000 1896 पर। आपको बताना है मस्मौला गौरव को कि ये कौन है। 5000 1896 मस्मौला गौरव आपके साथ मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: ओह माय गॉड,
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेज दूँ?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछी पुछी कुछी पुछी. ओके स्वीटहार्ट बाय. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते हमारे यहाँ.
2: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ.
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
1: क्या खाते हैं मैम?
2: मुर्गा.
1: मैम वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए.
3: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: तू है तो मैं हूँ और आप हैं तो मैं हूँ, मेरा नाम है
1: मस्त मौला गौरव।
0: और जब गौरव आपके साथ है तो देवी और सजनों बातों ही बातों में इस घंटे हम खेलते हैं वो जिसे कहते हैं जी। और पहचान कौन में आज जो मैंने आवाज सुनाई वो कुछ यूं थी,
2: नहीं हो तो वो लोग अभिजात भाई और राजू हिरानी देखने को आते और उनको किसी ने बोला ये प्ले है, हर शो में आके बैठते थे और हर शो में हमारा कुछ ना कुछ नया नया एंगल आता था।
0: और मैंने यही पूछा था कि आवाज किसका आता है, टॉप थ्री जो सबसे फास्टेस्ट थे उनके जवाब सुनते हैं जल्दी।
3: हेलो हेलो हेलो हेलो जी, मौला गौरव जी, बाल कृष्ण नेवपानी फ्रॉम दोहा सनिया एरिया
0: जी ब्रदर।
3: एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ।
0: अरे
3: ये जो अभी आवाज आपने बताया था बजाया था
0: जी जी जी
3: हमारे रेडियो पे, वो आवाज था परेश रावल का, 100%
0: परेश रावल।
4: गुड इवनिंग गौरव।
0: गुड इवनिंग यूसुफ भाई। हाँ ठीक,
4: यूसुफ ही है
0: जी जी जी।
4: ये आवाज परेश रावल की है, ठीक है।
0: ओके
4: थैंक यू, बाय बाय।
5: मैडम दिनेश यादव बोले परेश रावल की आवाज है, परेश रावल की आवाज है।
0: अरे यादव जी बिल्कुल सही। वेल ये वो लोग थे जिन्होंने फटाफट से वॉइस नोट भेजा, लेकिन वो नाम भी थोड़े बहुत जरूर सुनाऊंगा जिन्होंने लिख कर बताया है। एंड मैं इतना ही कहता हूँ यार, कभी कभी ना टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सेफ हैं गाड़ी पार्क की हुई तो आप ज़रूर मुझे भाई रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चंद्रा भाई थैंक यू सो मच, फैजल सूफियान, इसके अलावा थैंक यू नितिन को जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आनंद जी बिल्कुल सही जवाब, परेश रावल, आसिफ, मोनिका जिन्होंने लिखा है परेश रावल, और इसके अलावा संजीव भाई ने लिखा है परेश रावल, बलविंदर भाई ने भी लिख दिया है परेश रावल। यार मतलब सब सही थे क्या, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा कठिन तो होगा, लेकिन बिल्कुल सही जवाब है, मान गए सब के सब, पहचान ही जाते हैं किसी को भी। 89.6 मिर्ची वन, लेकिन आज भी उस दोस्त को नहीं पहचान पाओगे जो उधार लेके बहुत टाइम लगा था वापस देने में। मिर्ची सॉरी।

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: लेकिन मैं कहता हूँ सबका ध्यान हमारा कदर रखता। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। आज के इस मतलबी दौर की दुनिया में कतर उन सब का ख्याल रखता है जो कतर को बना रहे और कतर को सवार रहे। बात करो मैं उन लेबर की, उन वर्कर्स की जो दिन रात मेहनत कर कतर की ऊंची ऊंची इमारतें खुले में काम कर बनाते हैं। अब उन वर्कर्स को हीट स्ट्रेस के सिम्टम से कैसे बचाना है उसके तरीकों के बारे में बाकायदा यस मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अपना एक एडवाइजरी जारी कर दिया है। यहाँ आपको बताना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ बकायदा अवेयरनेस फैला रही है, मटेरियल्स के जरिए, वर्कशॉप्स के जरिए, ट्रेनिंग सेशन कर रही है जहाँ पर ये मैसेज हर कम्युनिटी के मेंबर तक पहुँचाया जा रहा है। एंड ऑनेस्टली ये कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस हिसाब से अब बाहर काम करते हुए मजदूर भाइयों को गर्मी का सामना करना है उनके लिए बकायदा एक टाइम जोन बनाया गया है जब वो बाहर काम नहीं करेंगे सुबह 10:30 से 3:30। उसके अलावा उन्हें क्या क्या ध्यान रखना है जब वो आउटडोर में पानी ज्यादा पीते रहे जब भी वो बाहर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अपने बॉडी के कुछ सिग्नल्स को बिल्कुल उन्हें इग्नोर नहीं करना है। हीट स्ट्रेस को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। कई बार आप बाहर होते हैं आपको लगता है चक्कर आ रहा है पर ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड मैं इतना ही कहूंगा हर साल वर्कर्स और रेसिडेंट्स के लिए सेफ्टी के लिए इनिशिएटिव लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ सामने आता है और हमें बताता है किस तरह से हम पानी पीकर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं और हमें कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है जब हम खुले में जा रहे हैं। ये सब कुछ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ को दिल से शुक्रिया। और ये बताता है कि इंसान चाहे कैसा भी है, कहीं से भी आया है, कोई भी बैकग्राउंड में काम कर रहा है, पर कतर बिना ऊंच नीच किए सबका ख्याल रखता है। इसलिए दिल से हुकूमत को धन्यवाद। 89.6 मिर्ची 1 पर बाहर काम करने वाले मजदूर भाइयों से यही कहूंगा बहुत ध्यान रखिएगा अपना। अगले चंद महीने थोड़े कठिन है पर मुझे पता है आपके अंदर वो हौसला है और आपके अंदर वो विश्वास है कि कतर आपकी सेवा में है। एंड बस थोड़ा ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए और मिर्ची सुनते रहिए। इट्स हॉट
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

गुरु रंधावा नीति मोहन की आवाज में ये गाना यस मैंने सुनाया। और देवी और सजनों ये भी बताना है कि हम भी नजर रखे हुए हैं, जिस दिन पैसे की रेट बढ़ जाती है हम तुरंत घर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दोस्त यार उधार देने को तैयार ही नहीं होता, पर अगर आपने जुटाए तो भेजो ना। Yes, right now की बात करें, एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26.20 है, 26 रुपए 20 पैसे भारत की मुद्रा। वहीं 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस 92.32। वाहिद कतरी रियाल के बदले अगर आप पाकिस्तानी रुपीस भेजना चाहते हैं 76.76 पाकिस्तानी रुपीस। वहीं तपाईँको नेपाली रुपीस का रेट छ दाजु 1 कतरी रियाल के बदले अगर घर भेजेंगे ना दाई तो 41.84 का भल छ रेट है दाजु। हाँ जी 41.84 को रेट छो हजूर। अगर इसके बाद हम बांधू बांग्लादेशी टाका का बात करेगा दादा एक टा कतरी रियाल के बदले 33.70 तो 33.70 घर भेज दियो पैसा अगर अच्छे से बजायो, अदरवाइज हमारी तरह बस कोई दोस्त या ढूंढते रहो, जिस दिन मिल गया उस दिन भेज दो मिर्ची।

0: पुराने गानों में इतना दम है कि इन्हीं का मिक्स हो के नया गाना बन रहे हैं। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। एंड देवी और सजनों, बारी आई घड़ी का टाइम बताने की, शाम के 6:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और दोस्तों, आज से मेरे साथ आप एक नया गेम भी खेलेंगे जिसमें गानों की मिक्सी चलेगी, यानी कि दो गानों की हम मिक्सी चलाएंगे, उनको मिक्स करके आप तक पहुंचाएंगे और आपको पकड़ना होगा कि ये कौन से दो गाने हैं जो हम आपके कानों में पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, जरा ध्यान से सुनना होगा गानों की मिक्सिंग जो हम गानों के मिक्सर ग्राइंडर के थ्रू आपके कानों में पहुंचा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, फिर ध्यान से सुनिए। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है गानों की मिक्सिंग? बताइए मैंने दो कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। फाइव 5000186 नंबर है, 5000186 जहां पर आप गानों की इस मिक्सी के बारे में बता सकते हैं। गौरव भाई, इसमें जो दो मटेरियल डले हैं वो ये वाले गाने हैं। 5000186 गानों की इस मिक्सी में बताइए मैंने कौन से दो चीजों को डालकर मिक्स किया है। 5000186 पर मस्त फॉलो गौरव आपके जवाब के इंतजार में। वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए और करण औजला का बॉयफ्रेंड गाना सुनिए मिर्ची पर। जितनी जल्दी सके भेजो ना मिक्सर ग्राइंडर वाला ये गाना।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: yeah.
3: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ बन गया क्या
3: यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या, मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
2: अब ऐसी बात क्या,
3: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो तरफ से मैं माफी
3: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं।
2: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
2: कुकड़ुकू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तो सिर्फ चोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

भी सब गुलाबी चल रहा है, शुद्ध देसी रोमांस की आवाज में गाना सुनाया किसने? देवियो सजो, मेरे साथ इस घंटे कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसका नाम ये गानों की मिक्सी, यानी कि दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स, यानी कि दो ऐसे गाने जिनको मैंने मिक्स किया और आपको बताना है कौन कौन से गाने हैं। हाँ जी, 5000 1896 पर आपको बताना है कि हमारा गौरव जो आप बजा रहे हैं उसमें ये दो गाने हमको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग आ रही है कि यही दो गाने हैं। अगर आपने पकड़ लिया है तो बताइए, एक बार फिर से सुन लीजिए। फाइव ट्रिपल जीरो 1896 पर मस्मोला गौरव आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। सही जवाब बहुत सारे लोगों के आए हैं, अगली बार सुनाऊंगा, मौका अभी फिलहाल आपको दे रहा है। यस, मस्मोला गौरव, जहां पर मैं ये पूछ रहा हूं कि बताइए इसमें वो दो कौन से गाने हैं जो आप सुन पा रहे हैं। फाइव ट्रिपल जीरो 1896 पर मस्मोला गौरव कर रहा है इंतजार, अगली बार देगा आपको जवाब। बेची पर इट्स हॉट।

0: हां जी नैना दा कहना, और ये कहना किसने सुना दिया? लेकिन फिलहाल इस घंटे हमने नया गेम शुरू किया है, नाम है गानों की मिक्सी, जहां पर दो इंग्रेडिएंट्स के साथ यानी कि दो गानों के साथ हम करते हैं मिक्सिंग और पूछते हैं बताइए ये कौन से दो गाने हैं। एंड कानों के पक्के हमारे मिर्ची लिसनर्स ने जवाब भेजना शुरू कर दिया भैया।
1: गौरव भाई सलाम नमस्ते, गुड इवनिंग मुजम्मिल।
0: जी मुजम्मिल भाई,
1: एक तो है मूवी बहुत पुरानी है, माचिस मूवी आई थिंक, चप्पर चप्पर चल कर चले का म्यूजिक है। दूसरा आई एम नॉट श्योर,
2: मस्त मोलो गौरव हाउ आर यू, बेशरम रंग और चपा चपा चरखा चले।
0: ओके, ये कह रहे हैं बेशरम रंग चपा चपा चरखा चले, नाम इनका समुद्दीन, और इसके बाद कौन है भाई?
3: हाय गौरव,
0: हाय हाय,
3: सॉन्ग इज चपा चपा चरखा चले एंड हमें तो लूट लिया, दिस इज स्मिता।
0: ओके बिल्कुल सही स्मिता जी, बिल्कुल सही जवाब है, सैमुद्दीन स्मिता ने बिल्कुल सही पकड़ा है। यस, ये गाने हैं हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, यानी कि बेशरम रंग एंड चपा चपा चरखा चले। कल से आपके कान और तेज चले, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब गानों की होगी मिक्सिंग और मिक्सर ग्राइंडर से बाहर निकालकर हम परोसेंगे आपके कानों के लिए, ताकि आप बताओ कौन से दो इंग्रेडिएंट से बना है ये वाला मिक्सर। 89.6 मिर्ची वाली थॉट
4: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: IBA payments ka wah tarika. With IBA, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBA app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBA, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

क्या आप भी उनमें से हैं जो किसी भी डिस्कशन को खाने के टेबल पर ला देते हैं? मस्त मौला गौरव। मुझे आपको नहीं पता, लेकिन मस्त मौला गौरव इस बात में बड़ा हर फन मौला खिलाड़ी है। मतलब डिस्कशन दुनिया भर की किसी बात का रहा हो, मैं उस टॉपिक को ऐसा डाइवर्ट करके खाने के टेबल पर ले आता हूँ कि लोग मेरे साथ फिर खाने का डिस्कशन करते हैं। और कतर में मेरे हर महफिल में मेरे साथ ऐसा हो जाता है। वेल, खाने ही खानों की बातों में मुझे याद आया कि अगर आप कतर में बॉम्बे की भेल या फिर बॉम्बे का वड़ा पाव, अब भाई दिल्ली के दही वाले छोले या फिर चाइनीज मोमोज खाने हो, या फिर आप क्रेव कर रहे हो छोले भटूरे से लेकर पनीर पराठे के लिए, तो एक जगह ऐसी मुझे पता लगी है जहां पर आपको ये सारा फ्लेवर सारा टेस्ट मिल जाता है। यस, उसके लिए आपको जाना होगा एसडान ओएसिस के चस्का रेस्टोरेंट में, जहां लेंगे आप स्वाद का चस्का और कहेंगे गौरव तुमने अच्छा दे दिया आइडिया यार, एक ही छत के नीचे जब इतनी वैरायटी मिल रही हो तो ऑलमोस्ट सारे दोस्तों यारों की क्रेविंग पूरी हो जाती है। ऐसे में अगर आप एक अच्छा खाना खाते हुए कुछ टाइम स्पेंड कर बॉलीवुड थीम के बीच में एंजॉय करना चाहते हो, तो चस्का रेस्टोरेंट आपको यही वाली फीलिंग देगा विद देयर बॉम्बे स्पेशलिटी। एंड साथ ही साथ आपको मिलेंगे नॉर्थ इंडियन डिशेस, चाइनीज के बहुत सारी वैरायटी, एंड ये सारी चीजें बड़े अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि पॉकेट फ्रेंडली भी। इस उम्मीद से कि अगली पार्टी आप यही अरेंज करें, मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है। और कभी कभी ना मुझे ऐसी बातें करते करते याद आता है कि यार दही के शोले में अगर हंकड़ थोड़ा और जबरदस्त तरीके से टैंगी हो जाए ना, अलग ही मजा देती है। चलो हम कोशिश करेंगे इस वीकेंड यहाँ पर खा के। मिर्ची इज हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
2: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए।
5: Cut, cut, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: बंजारे बरन गाना आपके कानों तक किसने पहुंचाया? लेकिन फिलहाल कतर की कुछ बड़ी खबरें आपके कानों में पहुंचा रहा हूँ शाम के 7:04 में।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, तो थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन मैंगो फेस्टिवल बोले तो हम्बा एग्जीबिशन लौट रहा है हमारे कतर में। यस, हम बता दें इंडिया के जबरदस्त दशहरी लंगड़ा, अल्फोंसो, केसर, हाफूस, नीलम, राजापुरी, मलगोवा और न जाने कौन कौन से, ये सारे के सारे मैंगो शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। तारीख मुकर्रर कर दी गई है June 18th, ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुख वाकिफ। 10 दिनों तक ये मेला चलेगा और वैरायटी के आम लकालक हम खाएंगे, मजे उड़ाएंगे एंड आम की अलग अलग वैरायटी से लेकर आम के बने अलग अलग डिशेस सब हम चख पाएंगे। तो तैयार हो जाइए हम्बा एग्जीबिशन के लिए तीसरा एडिशन, और बेहतरीन और बड़ा तैयार रहिए। एंड इन सबके बीच तैयार तो हमें होना है क्योंकि आने वाले कुछ दिन अब कतर में जबरदस्त गर्मी रहेगी। कतर अपने सबसे हॉटेस्ट फेज में पहुंच गया और 13 दिनों तक अब ये गर्मी का फेज जो है वो जबरदस्त तरीके से चलेगा। इस दौरान लगातार हवाएं भी रहेंगी, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जिसे अल बवारी भी बोलते हैं वो आ रही है हमारे कतर में, और टेम्परेचर इस दौरान 43-44 डिग्री तक पहुंचेगा जिसका सरफेस पे इंपैक्ट और ज्यादा होगा। इसलिए वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स से कहा गया है कि हीट रेगुलेशंस को एक तरह से आपको लागू करना है और अपने जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आउटडोर एरिया में काम कराने पर प्रोहिबिशन है, यानी कि बैन लगा हुआ है। प्लीज इन बातों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है, इसलिए पानी पीते रहिएगा एंड मस्मोलो घर के साथ एंटरटेनमेंट की गर्मी हमेशा यहाँ बनी रहती है। मिर्ची थॉट

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: Hello?
2: Hello, Sunil ji.
1: Haan ji.
2: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं.
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
1: वेरी गुड यार.
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
1: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
2: हाँ जी.
1: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक कोई आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना.
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
1: क्या?
2: पुराना लाइए नया ले जाइए.
1: क्या भैया पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
2: सर पुराना जो आपने
1: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
2: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
1: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
2: अरे अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
1: पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना
3: लाओ,
1: नया ले जाओ, ये ले जाओ.
3: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है.
2: सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष.
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

रबड़ी वाले अमृत से लेकर मैंगो शेक तक और कचरी से लेकर गुड़म्मा तक सब कुछ आ रहा है हमारे कदर में, क्योंकि लौट रहा है हमारे कतर का वो फेमस हम्बा एग्जीबिशन, ये जहां पर इंडियन मैंगो फेस्टिवल लग रहा है। यस, जून 18 से 10 दिनों तक ये मेला 27 जून तक लगा रहेगा, जहां पर इंडिया की जबरदस्त मैंगो वैरायटी आपको मिलेगी, चाहे वो दशहरी हो, लंगड़ा हो, अल्फोंसो हो, केसर, हापुस, नीलम, राजापुरी, मालगोवा, बादामी और इसके अलावा जितनी भी वैरायटी है सब एक छत के नीचे, यस, ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुख वाकिफ में लगने जा रहा है हम्बा एग्जीबिशन। एंड इस बार ये और जबरदस्त होगा, क्योंकि शाम 4 बजे से देर रात 10 बजे तक यहां पर आपको मिलेंगे जूसेस, आइसक्रीम, स्वीट्स एंड बहुत सारी और ट्रेडिशनल डेलिकेसीज। लेकिन मैंगो से बना हर आइटम चखने के लिए हमें अपनी जबान को तैयार रखना है दोस्तों, तो इंडिया वाले आम को मिस ना करें आप इस गर्मी के सीजन, इसीलिए आ गया है हम्बा एग्जीबिशन। तैयार हो जाओ, जेब को भी बचा के रखो, क्योंकि जब वहां पहुंचोगे ना तो जबान जो है वो भाग भाग कर हर काउंटर पे जाएगी और आपको हर आम की डिश का चटकारा मारना ही पड़ेगा। बस मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची साथ।

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: अनिरुद्ध रविचंद्र की आवाज में जिंदा बंदा आपके साथ है, नाम है लेकिन ये जिंदा बंदा सोचिए अगर कतर में एक प्रॉपर्टी ओन करे तो और कितने ज्यादा अरमान जिंदा हो जाएंगे हैं जी। वैसे हमारे और आपके लिए मौका आ गया है दोस्तों कि अब हम कतर में कुछ ऐसे एरियाज में प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं जो हमारे लिए बकायदा डेजिग्नेट किए गए हैं। यस, नॉन कतरीज को अब रियल स्टेट में ओन करने का मौका मिला है। आपको बता दें कैबिनेट रेजोल्यूशन नंबर 21 ऑफ 2026 जहां पर कुछ इलाकों में हमारे लिए बकायदा ओनरशिप का एक तरह से राइट्स तैयार किया गया है और ये ऑफिशियल गजट मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस द्वारा पारित भी हो गया है और आने वाले टाइम में हम और आप क्या पता कतर के कुछ इलाकों में अपने फ्लैट्स, अपने घर, अपने विला बना लें। यस, वेस्ट बे के लक्तफिया एरिया जोन 66 में पर्ल आइलैंड, अलखो रिसोर्ट, दाफना, ओनाइजा, लुसेल, अलखरेज, जबाल ट्वेलेब, इसके अलावा सिमाइस्मा रिसोर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट पर हम प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और कतर में ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे और आपके लिए भविष्य के कुछ अच्छे सिग्नल लेकर आई है। तो अगर आपकी आदत पड़ गई इतने सालों से कतर में काम करते थे, अब आपको लगता है कि यहां अपनी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इन डेजिग्नेटेड एरियाज में नॉन कतरीज कैन एक्वायर देयर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एंड आने वाले टाइम में आप कतर के एक प्रॉपर्टी ओनर हो जाएंगे। तो सोचिए बल्ले बल्ले ऐसे ही हो जाएगी क्योंकि कतर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और ऐसे में मौका है हमारे पास पैसे बचा के एक प्रॉपर्टी फटाफट से खरीद लें। इस उम्मीद में कि आपका दिल बड़ा है, आप मेरे साथ पार्टनरशिप में भी खरीद सकते हैं लेकिन मेरे पैसे आपको देने होंगे, मैं समय के साथ लौटाऊंगा। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

फिलहाल तो ये जोश से भरपूर गाना हमें गर्मी के खिलाफ लड़ने में ताकत देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कतर अपने सीजन के सबसे हॉटेस्ट फेज में एंटर कर चुका है। 7 जून से अगले 13 दिनों तक चरम गर्मी के बीच लू के थपेड़े भी हमें घेरते रहेंगे, लेकिन हमें पानी पी पी कर इनको कोस कोस कर जल्दी से पार कर देना है। यस, अल बवारी जो विंड है उसका नाम रखा गया है। ये कतर मेट्रोल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जून 7 से शुरुआत हो जाती है उस महीने की, जिसे कह सकते हैं कि प्ले द स्टार कहा जाता है, और इसी दौरान जबरदस्त तरीके से गर्मी होगी। लेकिन घबराना नहीं है, आज गर्मी है तो कल ठंडक भी होगी, और धीरे धीरे पानी पीकर अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है। ओपन में काम करते हुए मजदूर भाई बताना है, सुबह 10 से 3:30 बजे तक आपको नहीं करना है, और जो ऐसा करा रहा है वो वायलेशन कर रहा है, और जल्द ही उस पर फतूरा भी आएगा। हमें भी चिंता नहीं, फिकर नॉट है जी। इस उम्मीद में कि आप और हम अपना ध्यान रखेंगे, अब अगले कुछ दिनों में गर्मी जब बढ़ेगी तो अपना पूरा ख्याल रखेंगे। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में ढेर सारी बातें लेकर एंड मिर्ची पर गेम्स खिलाने के लिए। 89.6 मिर्ची 1 हबीबी मस्त सलामा, इट्स ऑल टर्रा बाय।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
5: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है. कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना. लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई, हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान. और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है. क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन. एक गाने का, एक कहानी का, या फिर एक इमोशन का. और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में. हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20. एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं. दियोल ब्रदर्स, दे सडनली एवरीवेयर. एंड मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज टैलेंट. लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज रेजिलियंस. शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से. ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है. सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा. बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन. कहीं जाना मत. आई विल बी बैक.
6: नंबर 20.

0: मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है। और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: दिस फिल्म मैन, जब वी मेट। और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं। एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कम्प्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था कि बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती हैं, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे और पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है। फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस और श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी।
2: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज। ढाई किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: ओह माय गॉड,
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम प्रॉब्लम।
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेज दूँ?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे husband से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछी पुछी कुछी पुछी. ओके स्वीटहार्ट बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
1: गोलगप्पे नहीं होते हमारे यहाँ,
2: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो।
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
1: क्या खाते हैं
2: मैम? मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है।
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं पता।
2: हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए।
3: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 11.

0: चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों I'm sure आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है। इसे शाम की ठंडी हवा, इसे वो लंबी ड्राइव, इसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना। और हाँ, शायद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है, दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। And how Shahid can still look so convincing as a college boy, it totally baffles me. But he nails it. मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। बस इतना पता है, मैं इसे skip नहीं कर पा रहा। And maybe that's the biggest compliment a song can get. Maybe this song will go to number one. लेकिन इस हफ्ते on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds. और उनको साथ मिल रहा है सुनिधि चौहान का, दो अलग दुनिया एक साथ। This is तुझको from Cocktail 2.
1: Number 10.

0: अर्जुन आएंगे?
1: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM, मिर्ची वन। It's hot.
6: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, which tells you everything you need to know about the hold this franchise still has on the audiences. Lekin Dhurandhar ko dekhkar mujhe ek aur baat yaad aati hai. Some collaborations, right, just work. Uska koi reason nahi hota. You can't explain it. You can't manufacture it. Shah Rukh Khan aur Karan Johar ko dekhiye. Akshay Kumar aur Priyadarshan ko dekhiye. Aur meri list mein ek aur jodi hai. Sanjay Dutt aur Sanjay Gupta. मुझे ऑनेस्टली उनके फॉल आउट के बारे में कुछ नहीं पता. आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट. मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया. हर एंट्री लगी लार्जर देन लाइफ. संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल फेल्ट डेंजरस. हर फ्रेम एक पोस्टर लगा. वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज. संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे. और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे. अ फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड कि बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते. उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे. उस गाने ने हर रूल को तोड़ा. ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं. बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस. लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट. दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट. एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स. ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे. जय

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Zaheer.
6: Zaheer. Zaheer who?
5: Zaheer si baat hai. Main hi hu. Aur koi nahi.
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 3.

0: Will the film also be wow? करते हैं इंतजार. लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल. ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा. मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की. देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन. डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल. वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है. आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, we've got romance, we've got action, we've got patriotism, लेकिन stylish international crime thriller, criminal mastermind, ऐसा anti-hero जिसके लिए आप secretly root करने लगते हो, there is none, zero, कोई भी नहीं है. शायद इसलिए Dawn important है, क्योंकि जब Bollywood हर दूसरे हफ्ते एक sequel announce करता है, तब उसकी सबसे unique franchise uncertainty में खड़ी है, and that feels strange. हो सकता है Dawn 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, which is why I said it's the death of cool. So now it is up to Farhan Akhtar. वही डिसाइड कर सकते हैं if India gets another Dawn, if the world gets another Dawn, या फिर maybe we have seen the last of him. फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर वन एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव. ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर वन, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर.
1: नंबर वन.

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
3: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
2: सर कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
3: ओह माय गॉड, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: डिंपल कपाड़िया को बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनके इस ड्रीम को सपोर्ट किया उनकी फैमिली ने, खासकर उनके फादर ने। वो लोग ऑलरेडी बॉम्बे में रहते थे, उनका एक सोशल सर्कल भी था अच्छा खासा। तो डिंपल कपाड़िया के फादर ने ऐसी सोशल गैदरिंग्स में जाना शुरू कर दिया जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते थे। आपको पता है डिंपल कपाड़िया को जो पहली फिल्म ऑफर हुई थी वो थी 1970 की गुड्डी, वही जिसमें जया बच्चन जी थी। लेकिन किसी वजह से डिंपल ये फिल्म नहीं कर पाई। लेकिन वो कहते ना, कई बार आप जो सोचते हो वो नहीं होता, क्योंकि डेस्टिनी का कोई और ही प्लान होता है। तो डिंपल कपाड़िया की एक फैमिली फ्रेंड थे जो राज कपूर की भी फैमिली फ्रेंड थे। तो जब वो बॉबी के लिए नई एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे, उन्हें डिंपल कपाड़िया के बारे में पता चला, उनका ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट वगैरह हुआ और उन्हें बॉबी फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। तब वो सिर्फ 14 ईयर ओल्ड थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना, मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: इज दैट संजीव?
3: या स्पीकिंग।
4: हाय संजीव, आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम। संजीव, आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए। ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है। तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
3: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज।
4: ओके,
3: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है।
4: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
3: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव।
5: चुप कर, 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव।
3: सॉरी सर,
4: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में। ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ। हाँ बताइए। भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
3: कस्टमर्स आए, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड।
5: बकवास बनकर कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर,
3: हम करते थे सेटिस्फाइड
5: कर। बकवास बनकर
3: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग।
4: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
3: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने।
5: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा। अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार।
3: अभी तक
5: पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है। मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा, मोबाइल पकड़ा कभी हाथ में?
3: बोल
5: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा। कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है।
3: खुद को देखा आपने कभी?
4: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है, मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड, तुम्हें जॉब मैं दूंगा। तुम मेरे शो में आके बैठो, मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
9: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on

आपको पता है आज भी पोल्का डॉट्स प्रिंट वाली ड्रेसेस को बॉबी प्रिंट ड्रेसेस कहा जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1973 की फिल्म बॉबी में डिंपल कपाड़िया ने वो जो पोल्का डॉट्स प्रिंट वाला व्हाइट कलर का टॉप पहना था, ये फैशन ट्रेंड वहां से शुरू हुआ था। इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया वॉज सच अ सेंसेशन, उनको इतने सारे फिल्म ऑफर्स आए, लेकिन अपने सक्सेस का उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया क्योंकि फिल्म रिलीज होने के 6 महीने पहले ही वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर चुकी थी। राजेश खन्ना साहब चाहते थे कि उनकी वाइफ हाउसवाइफ बन के रहे एंड डिंपल कपाड़िया ने वैसा ही किया। कुछ इंटरव्यूज में हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि शी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, कि बॉबी फिल्म करना कितनी बड़ी बात उनके करियर के लिए हो सकती है, वो आगे क्या क्या कर सकती हैं। वेल, प्यार में अक्सर लोग कई बार इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले। एनीवे, अभी हम क्या करेंगे, हम गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

सुपरस्टार राजेश खन्ना और राज कपूर की नई हीरोइन डिंपल कपाड़िया ने मार्च 1973 में अचानक से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री और पब्लिक दोनों को शॉक दे दिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1971 में जब डिंपल कपाड़िया को बॉबी फिल्म के लिए साइन किया गया तो वो काफी पॉपुलर हो गई और उनको इवेंट्स वगैरह में भी इन्वाइट किया जाने लगा। ऐसे ही एक इवेंट में राजेश खन्ना भी इनवाइटेड थे। दोनों ने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया, प्यार हो गया, शादी हो गई। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि डिंपल कपाड़िया इतनी यंग थी उस टाइम पे, 16 साल की, उनको राजेश खन्ना पे क्रश था, वो उनकी फैन थी, उन फीलिंग्स को उन्होंने प्यार समझ लिया। इधर राजेश खन्ना हु वाज 30 ईयर ओल्ड देन, वो अंजू महेंद्रू जी के साथ अपने 7 साल के लिव इन रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बाद शायद रीबाउंड वाले सिचुएशन में थे। डिंपल जी ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर भी किया था कि जब वो राजेश खन्ना जी के घर में एंटर हुई उनको ऐसा लगा कि एक रॉन्ग डिसीजन था, और ऐसा ही था क्योंकि उनकी जो मैरिज थी वो एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। 1982 में दोनों अलग हो गए। उसके बाद डिंपल जी ने अपने करियर की वापस से शुरुआत की। 83-84 में भी उनकी कुछ फिल्में आई, लेकिन 1985 की फिल्म सागर को उनकी कमबैक फिल्म कहा जाता है क्योंकि ये फिल्म बहुत हिट भी हुई थी। इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

डिंपल कपाड़िया का बचपन से एक्ट्रेस बनने का सपना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, जो पूरा भी हुआ। बॉबी जैसी फिल्म से उनका डेब्यू हुआ भाई, उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो इतनी पॉपुलर हो गई। लेकिन फिल्म रिलीज होने के पहले ही उनको प्यार हो गया था, शादी भी हो गई। उनके हस्बैंड राजेश खन्ना चाहते थे कि वो हाउसवाइफ बनकर रहे, डिंपल कपाड़िया ने भी यही अपना डिसीजन बना लिया, वो उनकी चॉइस थी उस टाइम पे। फिर इस शादी से जब वो बाहर आई 80s में, उन्होंने अपने करियर की सेकंड इनिंग्स की शुरुआत की। 1985 की सागर फिल्म को उनकी कमबैक फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म में उनका जिस तरह का रोल था ग्लैमरस, उनको उसी तरह के फिर रोल्स मिलने लग गए। लेकिन डिंपल कपाड़िया कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, जो 80s के डेकेड में थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि तब मल्टी स्टार फिल्में ज्यादा आ रही थी या वायलेंट फिल्म ज्यादा आ रही थी। तब भी उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जिसमें शी स्टूड आउट, फिल्म्स लाइक जख्मी औरत या काश। और फिर 90s तक आते आते तो उन्होंने काफी ऑफ बीट आर्ट फिल्म्स, जिन्हें कहा जाता है, उस तरह की फिल्में की, जैसे दृष्टि, रुदाली, लेकिन। और मैंने डिंपल कपाड़िया को जिस गाने में सबसे पहले आई थिंक देखा था, एंड आई वॉज वंडरिंग कि भाई इतनी सुंदर औरत ये कौन है, वो गाना हम यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
2: अरे शादी के दिन तो ना के जा।
3: रुक, रुक।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे, शो का नाम पुरानी जीन्स।

0: आपको पता है गाइड फिल्म पहले देवानंद के भाई विजय आनंद की जगह डायरेक्टर राज खोसला डायरेक्ट करने वाले थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक खूबसूरत वजह से। वो खूबसूरत वजह थी वहीदा रहमान जी। सुनिए वहीदा जी ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था इस बारे में।
1: देव ने मुझे वो नॉवल भेजी दी गाइड आर के नारायण की, तो हिंदी वर्जन के लिए राज खोसला डायरेक्ट कर रहे। मैंने कहा ओ तो क्यों क्या हुआ? मैंने कहा आपको मालूम है देव, 16 साल के सेट पे मेरे उनकी थोड़ी झड़प सी हो गई थी, तो बहुत बहुत नाराज हुए। फिर उन्होंने भी कहा यू आर फिनिश, दिस इज योर लास्ट मूवी एंड आई विल नेवर वर्क विथ यू, कट टू गाइड। मैंने कहा देव आपको मालूम है ना, मैं अरे छोड़ो यार पुरानी बात है, इज अ नाइस मैन। उन्होंने कहा दैट इज अ नाइस मैन, वेरी लवेबल, वेरी फ्रेंडली एंड एवरीथिंग। देव कहने गए वहीदा ये कुछ कम नहीं हो, तुम्हारा ईगो बहुत है। मैंने कहा ये ईगो की बात नहीं, उसूल की बात है।
0: ईगो नहीं उसूल, यही तो प्यारी बातें पुराने लोगों की। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो नवनीत। नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
3: हाय नवेद,
4: क्या हाल चाल है?
3: बढ़िया है।
4: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
3: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
4: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
3: हाँ?
4: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
3: यार मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
4: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
3: मिस्टर दिलीप।
4: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
3: मैं क्या कुछ गलत
4: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
3: अब ऐसी बात क्या
4: ऐसी हो ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
3: अब मैं क्या
4: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
3: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
4: तुम मुझे ये बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता? यार नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं, उसमें ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
3: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
4: अरे तो
3: तरफ से मैं
4: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
3: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
4: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
3: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
4: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
3: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया है।
4: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे ही अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
3: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
4: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
3: कुकड़ुकू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप अंताक्षरी खेल रहे हो या फ्रेंड्स के साथ बैठ के जैम सेशंस हो रहा हो, म्यूजिशियंस बैठे हो और ये वाला गाना प्ले ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कलाकार फिल्म का नीले नीले अंबर पर मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। कल्याण जी आनंद जी का कॉम्पोजिशन, इसे लिखा है इंदिवर एंड मनोज कुमार ने एंड गाया है किशोर कुमार ने। और इसका जो पर्टिकुलर गिटार पीस है ना, जो बहुत पॉपुलर है, ये प्ले किया है बहुत ही ब्रिलियंट म्यूजिशियन सुनील कौशिक साहब ने, जिन्होंने बहुत से गानों में गिटार पीसेस प्ले किए हैं। इन्होंने 90s की बहुत सारी फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर दिया है एंड बहुत सारे टेलीविजन शोज के म्यूजिक में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग छोटा भीम।
1: भीम भीम भीम छोटा भीम भीम भीम।
0: सो हैट्स ऑफ टू सुनील कौशिक साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। You can catch me on Instagram @rj.charu, rj.charu, इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन

0: शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और हसरत जयपुरी साहब ना 1940 में बॉम्बे आए थे और पहला काम जो उन्होंने किया था शहर में आके, वो बस कंडक्टर का काम था, जिसका उनको महीने का 11 रुपया मिलता था। और क्योंकि वो शायर भी थे तो मुशायरों में भी जाते थे। ऐसे एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर साहब ने उनको नोटिस किया और रेकमेंड किया अपने बेटे राज कपूर को, जो उस टाइम एक म्यूजिकल लव स्टोरी बना रहे थे, 1949 की फिल्म बरसात। तो मामला डन हो गया। म्यूजिक कंपोजर्स थे शंकर जयकिशन एंड लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी साहब, और यहाँ से शुरुआत हुई इनकी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की। तो इसी तिकड़ी का एक और गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो. टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
2: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: 89.6, 89.6, it's hot. Purani jeans, Charu ke saath, sirf Mirchi par.
5: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मदन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे.

0: ये मस्त गाना है 1973 की फिल्म कहानी किस्मत की का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसे कंपोज किया है कल्याण जी आनंद जी ने, लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और गाया है किशोर कुमार ने। और इसमें वो जो फीमेल वोकल्स है ना,
1: क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: ये कहा है उषा टिमोथी नाम की सिंगर ने। जी इन्होंने बहुत सारे हिंदी फिल्मी गाने गाए हैं। इनके गाने बहुत हिट नहीं हुए तो भी इन्होंने काफी गाने गाए हैं। और इस पर्टिकुलर गाने के लिए ना उन्होंने क्रेडिट्स लेने से मना कर दिया कि ये एक दो बार ऐसे बोला ही तो है, इसका क्या क्रेडिट लेना। ये होती है अच्छे लोगों की निशानी। और आप भी अभी अच्छा सा काम कर दो, मुस्कान को ले जाओ कान तक और कान रखो मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, साथ ही रखना छोड़ना नहीं।

1983 की फिल्म रजिया सुल्तान में जब कमाल अमरोही साहब ने धर्मेंद्र को कास्ट किया था तो काफी लोग हैरान हो गए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बिकॉज ऐसा सुनने में आता है कि 1960s में कमाल अमरोही जी की वाइफ मीना कुमारी जी और धर्मेंद्र के बीच में एक रिलेशनशिप था और धर्मेंद्र ने मीना कुमारी जी को ये भी सजेस्ट किया कि वो कमाल अमरोही को छोड़ दें। हालांकि कमाल अमरोही साहब ने ये क्लियर किया था कि उनके और मीना कुमारी जी के बीच में जो भी हुआ या जो भी डिफरेंसेस थे उसके लिए उन्होंने कभी धर्मेंद्र को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कमाल अमरोही साहब ने सॉर्ट ऑफ अपना रिवेंज लिया थोड़ा सा, बिकॉज इस फिल्म में धर्मेंद्र को एक अफ्रीकन स्लेव दिखाया गया और इस वजह से उनकी स्किन बहुत डार्क कर दी गई। बाद में ये भी बातें हुई कि ये झूठा एलिगेशन था, ऐसा कुछ नहीं था, ये रोल की डिमांड थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

कूली फिल्म के सेट पे जब अमिताभ बच्चन साहब का मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से काफी फिल्में बंद हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी एक फिल्म थी जिसका नाम था औकात। ये बनाने वाले थे ऋषिकेश मुखर्जी, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी एंड प्रोड्यूसर देवेश घोष। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ होने वाली थी जया प्रदा एंड अनीता राज, लेकिन क्योंकि बच्चन साहब का एक्सीडेंट हो गया, ये फिल्म कैंसिल कर दी गई। इसी टीम की दो और फिल्में बन चुकी थी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर की, बेमिसाल एंड जुर्माना। एंड आई थिंक जुर्माना फिल्म वॉज द फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन साहब ने ऐसे प्ले बॉय टाइप का रोल प्ले किया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: दोस्ती कहकर सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा, खूब मिलेगा, खूब
3: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: नूरी फिल्म का गाना हमने सुना और इसके बाद हम सुनेंगे बॉबी फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इन फिल्मों के नाम पता है मैंने 90s के कुछ गानों के थ्रू सुने थे। 1995 की एक फिल्म थी हलचल, जिसका गाना था सावन का महीना, शादी बिना मुश्किल है जीना, जूली नूरी बॉबी या फिर चलेगी अपनी गली की मीना। और एक और फिल्म थी 1991 की पत्थर के फूल सलमान खान की, जिसमें गाना था कभी तू छलिया लगता है। उसकी लाइंस थी कभी तू नूरी लगती है, कभी तू जूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बॉबी लगती है। तो नूरी गई थी, अभी बॉबी आ गई है। पुरानी जीन्स पर मैं यानी कि चारू वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद। सुनते रहिए मिर्ची
1: बाहर।

0: जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
4: ऑफ कोर्स, कस्तो मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे, और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे, और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
3: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: Jeans with Charu, only on

भाई क्या गजल पढ़ी मैंने, क्या गजल पढ़ी, मजा आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो वसीम बरेलवी साहब की गजल है, ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है, मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है, कोई बताए ये उसके गुरूरे बेजा को, गुरूरे बेजा मतलब बहुत ज्यादा घमंड, कोई बताए ये उसके गुरूरे बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Mal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।